नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए।

0: इस बीच ईरान ने हॉर्मुज जलरम मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में, इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी इंदौर के सभी श्रोताओं को इस पावन भोर की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मैं पूजा ठाकुर सादर प्रणाम करती हूँ। अंधेरा छट रहा है और प्रकृति के आंगन में सूरज की पहली किरण दस्तक देने को आतुर है। इस दिव्य बेला में जब चराचर जगत उस परम पिता के स्वागत में जागृत होता है, आइए हम भी अपने मन के मंदिर के द्वार खोलें। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम भक्ति संगीत वंदना। श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिर या इबादतगाह तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने देश और उस मिट्टी से प्रेम करना भी भक्ति का ही एक रूप है। विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे अलग अलग फूलों में गूंथी हुई एक माला भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है, वैसे ही हम सब भारतीय भी अलग अलग रूप, रंग और भाषा में होते हुए भी एक ही सूत्र में बंधे हैं। आइए आज इस वंदना में राष्ट्रभक्ति और एकता के स्वर घोलते हैं।

श्रोताओं, भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ मंगल मूर्ति श्री गणेश के सुमिरन के बिना अधूरा है। आज की इस भक्ति संगीत वंदना में आइए हम भी विघ्नहर्ता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। बुद्धि और सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य श्री गणेश की इस वंदना का लाभ उठाएं।

श्रोताओं, सुबह की इस पावन बेला में जब तक मन में मुरलीधर की तान ना गूंजे, तब तक हृदय को चैन कहाँ मिलता है। कहते हैं कान्हा की मुरली मात्र एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि वो पुकार है जो भटके हुए मन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले आती है। आइए अपनी सुध-बुध खोकर डूब जाते हैं गोकुल की उन गलियों में और सुनते हैं मनभावन भजन।

श्रोताओं, भक्ति संगीत की दुनिया में जब बनारस की पावन मिट्टी और शास्त्रीय संगीत की सुध बुध साध मिल जाती है, तब जन्म लेती है एक ऐसी ध्वनि जो सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचती है। आइए

चंद्रमा को माथे पर सजाने वाले, गले में विष धारण करने वाले उन नीलकंठ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, सुनते हैं रागों की शुद्धता और भक्ति की पराकाष्ठा से भरा ये भजन।

0: श्रोताओं, ये था आज का वंदना कार्यक्रम। आलेख एवं संकलन आदित्य शर्मा का, स्वर पूजा ठाकुर के। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की अप्रिय परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दें। इसका अर्थ यह है कि आप उन परिस्थितियों का सामना अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से करें। आप यह विश्वास रखते हैं कि सबसे अच्छा होगा, न कि सबसे बुरा। सकारात्मक सोच अक्सर आत्मसंवाद से शुरू होती है। आत्मसंवाद उन अनकहे विचारों की निरंतर धारा है जो आपके मन में चलती रहती है। ये स्वचलित विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। कुछ आत्मसंवाद तर्क और समझ से आते हैं, जबकि कुछ गलत धारणाओं, अधूरी जानकारी या पहले से बनी अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि आपके मन में चलने वाले विचार अधिकतर नकारात्मक हैं, तो आपका जीवन दृष्टिकोण निराशावादी होने की संभावना है। वहीं यदि आपके विचार अधिकतर सकारात्मक हैं, तो आप आशावादी हैं, यानी सकारात्मक सोच का अभ्यास करने वाले व्यक्ति। सकारात्मक सोच के स्वास्थ्य लाभ। शोधकर्ता लगातार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सकारात्मक सोच और आशावाद का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके संभावित लाभ इस प्रकार हैं: जीवन काल में वृद्धि, अवसाद यानी डिप्रेशन की कम दर, तनाव और दर्द का कम स्तर, बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, हृदय स्वास्थ्य का बेहतर होना और हृदय रोग व स्ट्रोक से मृत्यु का खतरा, कैंसर से मृत्यु का कम जोखिम, श्वसन संबंधी रोगों से मृत्यु का कम खतरा, संक्रमण से मृत्यु का कम जोखिम, कठिन समय और तनाव में बेहतर तरीके से सामना करने की क्षमता। हास्य को अपनाएं, कठिन समय में भी मुस्कुराने और हंसने की अनुमति दें, रोजमर्रा की घटनाओं में हास्य को खोजें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन सीखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणादायक और सहयोगी हों, सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें, अपने आप से वही बातें कहें जो आप दूसरों से कहेंगे, खुद के प्रति दयालु और प्रोत्साहित करने वाले बने। जीवन में कठिन समय का आना स्वाभाविक है, ऐसे में दुख, क्रोध या तनाव महसूस करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना। यह अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाता है। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रोज उन लोगों, अनुभवों और चीजों के बारे में लिखें जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। नियमित अभ्यास आपको कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखेगा। दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप किसी की कठिनाई में साथ देते हैं तो आपको संतोष मिलता है और एक जुड़ाव की भावना विकसित होती है। दूसरों की मदद करना एक ऐसा कार्य है जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आपके जीवन में आशावाद, स्वास्थ्य, आर्थिक संतुलन और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यदि नकारात्मक विचार आए तो उसे तर्कसंगत रूप से समझें और सकारात्मक पुष्टि में बदलें। सकारात्मक

0: मानसिकता यानी पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आपके स्वास्थ्य और सफलता को बेहतर बनाता है। जब आप कृतज्ञ यानी आभारी और खुश महसूस करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। सकारात्मक लोग आमतौर पर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं। शोध से पता चलता है कि आशावादी लोगों में अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं और वे दैनिक जीवन में कम तनाव महसूस करते हैं। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और संतुलित आहार अपनाते हैं। ये सभी स्वस्थ आदतें आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। दीर्घकालिक पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच के कुछ और लाभ। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आप अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने, रचनात्मक बनने, मजबूत नेतृत्व विकसित करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाते हैं। सकारात्मक सोच एक आदत है जो अभ्यास से विकसित होती है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए हमेशा खुद से कहें, स्टे पॉजिटिव।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख नीरज सालवी का, वाचन स्वर राहुल तिवारी। खेती की बातें कार्यक्रम लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में सोयाबीन की विभिन्न बुआई विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्वर है स्मिता दुबे के।
2: खेती की बात कार्यक्रम में स्वीकार करो तुम्हारी बहन स्मिता की, राम राम। भाई बहनों, आज अपन अपना कार्यक्रम में बात करा सोयाबीन की बुआई की विधि ना पे। हम सब जाना है कि सोयाबीन भारत की एक प्रमुख तिलहनी और दलहनी फसल है, तो क्योंकि इसमें प्रोटीन अन्न तेल की मात्रा भी अधिक रहे, यह किसान ना की आय बढ़ाना का साथे साथे भूमि की उर्वरता भी बनी रखे है। अच्छी उपज प्राप्त करना का सारू केवल अच्छा बीज नहीं चाहिए बल्कि सही समय, सही विधि, अन्न उचित देखभाल की भी आवश्यकता पड़े है। सबसे पहला बुआई का पहला हमारे खेत की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। खेत की 2-3 बार जुताई करी ने मिट्टी के भुरभुरो बनानो, फिर इका बादे खेत के समतल कर लेनो ताकि वर्षा को पानी जो है समान रूप से फैली जावे और जल भराव नहीं होए। अब अपन बात करा बुआई का समय की, तो सोयाबीन की बुआई जो है हम अच्छी वर्षा का बादे, जो मानसून की पहली अपनी अच्छी वर्षा हुई जाए उका बादेज करा हाँ, तो अभी समय तो आई गयो है और इन्हीं समय पे बुआई करना से पौधाना का विकास भी अच्छो होए और उत्पादन भी हमारे अधिक मिले। घनी जल्दी कदी हम बुआई करी दा या घनी देर करी दा तो उकसे भी हमारी उपज जो है वह प्रभावित होवे है। तो भाई बहनों, आज जाना अपन कि कई कई तरीका ऐसा है जिका से हम सोयाबीन की बुआई करी सका। सबसे पहला वैज्ञानिक और लोकप्रिय विधि सीड ड्रिल द्वारा जो बुआई करे है उका बारा में जाना। इका में बीज एक समान गहराई अन उचित दूरी पर बुवाए है, इससे पौधा ना को विकास भी समान रूप से होए और बीज की बचत भी हुई जाए, साथ ही अच्छी उपज भी प्राप्त होए। ऐसे दूसरी विधि जो है वह कतारना में बुआई करनो। इन्हीं विधि में पौधा ना के निश्चित दूरी पर कतारना में लगायो जावे, इससे निराई गुड़ाई उर्वरक को प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण यो सब करनो आसान हो जाए, साथ ही पौधा ना के पर्याप्त धूप भी मिले और हवा भी मिलती रहे। ऐसे एक विधि है जिका में बीज ना के पूरा खेत में हाथ से बिखेर दियो जावे। यह विधि सरल तो है लेकिन इका में बीज ज्यादा लगे है, पौधा की दूरी भी समान नहीं रहे, अन्न उपज जो है वह अपेक्षाकृत दूसरी विधि ना से कम मिले। इका सारू इन्हीं विधि को उपयोग कम से कम करे है। भाई बहनों, और बुआई करना का समय में हमारे कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी भी रहे जिनको ध्यान रख लेना चाहिए, जैसे कि बीज का हमेशा प्रमाणित होए, रोगमुक्त हो, उपचारित हो, है नी, उनको बुआई का पहला उपचार कर ही लेना चाहिए ताकि फसल रोगना से सुरक्षित रहे। बीज ना के लगभग तीन से पांच सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखनो लाभदायक रहे। बुआई का बाद खेत में नमी बनी रखनी चाहिए, वो जरूरी है। खरपतवार की समय पर रोकथाम करनी चाहिए और कभी जरूरत पड़े तो आवश्यकता अनुसार उर्वरक ना को संतुलित प्रयोग भी करना चाहिए। कीट और रोग

0: कदी दिखे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए और उका अनुसार उचित नियंत्रण और उपाय अपनाना चाहिए। आज आधुनिक कृषि तकनीक का कारण सोयाबीन की खेती और भी आसान और लाभदायक बनी गई है। उन्नत किस्म का बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, वैज्ञानिक खेती अपनाई के किसान अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके है। तो बहनों और हमारा किसानों कदी सही विधि और वैज्ञानिक तरीका से सोयाबीन की बुवाई करेगा तो वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेगा। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और देश की कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा। इका साथ मैं अपनी वाणी के दूं विराम। राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सोयाबीन की विभिन्न बुआई विधियों के बारे में जानकारी हासिल की। जानकारी दे रही थी स्मिता दुबे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण, इस विषय पर केंद्रित होगा आज का वसुंधरा कार्यक्रम। आप सुनेंगे 7:20 से। जानकारी देंगे डॉक्टर विवेक चौरसिया। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:35 से। कल के सितारे बच्चे हमारे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 से। आज के कार्यक्रम का विषय है वर्ल्ड पेपर बैग डे। इस विषय पर केंद्रित कार्यक्रम में सहभागी बच्चे हैं भूविक पांडे, माही विश्वकर्मा और नंदिनी पटेल। लोक संगीत में फतेह सिंह परमार राही के गाये लोकगीत 9:00 और 6:45 पर सुने जा सकते हैं। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गायी गजलों का आनंद आप ले सकते हैं सुगम संगीत में 9:15 और 6:30। यशवंत बुआ जोशी का गाया राग बिलास खानी तोड़ी आज के शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे 9:30। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का समय होगा 10:05। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप 10:05 से 11:00 के मध्य फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और आइए अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में बता दें। इस श्रृंखला में दिन में 11:00 हम आपको सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है 12:00 और 2:00। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1:00 आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान प्रसारित होगा 2:30 से। आइए श्रोताओं, सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी आपको बता दें। सांध्यकालीन सभा में 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम में युवा तरंग क्रम होगा। 5:45 से आप फिल्म संगीत सुनेंगे। खेती गृहस्थी कार्यक्रम रोजाना की तरह 7:20 से होगा। इस कार्यक्रम में खरीफ के मौसम में वित्तीय जोखिम कम करने में फसल बीमा की भूमिका, इस विषय पर डॉक्टर नेहा द्विवेदी द्वारा दी गई जानकारी आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम में लोकगीत भी होंगे।

रात्रि 8 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम और 8:15 पर डगर विकास की, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:30 का समय

होगा फिल्म संगीत का। 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रगीत होगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 से, और रात्रि 10 से अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय

0: लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकुआ को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा,
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। कल ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और वे 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं वहां के भारतीय समुदाय तक लेके पहुंचे हैं।
1: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर में कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसमें अनेक गतिविधियां इस दिशा में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद करेगी।
2: देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा।
0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत एट 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव 2026 में इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रूपये दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रूपये की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रूपये से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरूआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में

0: पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज इंदौर में ग्राम बुड़ानिया में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। हैदराबाद में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय आईटी उद्योग से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवा मॉडल से आगे बढ़कर एआई मॉडल अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक एआई पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है, ताकि भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सके। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडला जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान का शुभारंभ किया गया। परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीमच में जागरूकता रैली निकाली गई और बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। इटली के लोनाटो शहर में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अकादमी की दूसरी खिलाड़ी मनीषा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया गया। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की पूर्व खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत ने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, चंबल शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। रामपुर में 63 मिलीमीटर और अटेर में 54 तथा रीवा शहर में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ कल किया गया, जिसमें मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल रहे। खंडवा जिले में और इसके हरसूद तथा पुनासा तहसील न्यायालयों में आगामी 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। आगरमालवा जिले के ग्राम निपनिया बैजनाथ आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोटला में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल 125 छात्र छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। और डिंडौरी जिले के प्रत्येक विकासखंड की 7-7 शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सोशल ऑडिट आगामी 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए वसुंधरा कार्यक्रम। भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण, इस विषय पर आज के कार्यक्रम में हम आपको एक वार्ता सुनवा रहे हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर विवेक चौरसिया।

0: समुद्र जिसकी वस्त हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।
1: भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण। भारतीय संस्कृति जल की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में जीवन और जगत के जन्मदाता, आधार व रक्षक जल देवता की महिमा का जितना कीर्तन किया गया है, उतना विश्व की किसी अन्य सभ्यता व संस्कृति में दुर्लभ है। सनातन संस्कृति के घोषणा पत्र रूपी वेदों में जल की वंदना आपो अस्मान मातरह कहकर की गई है, अर्थात जल हमारी माता है, क्योंकि जल न केवल माता की भांति हमें जन्म देता है, अपितु माता के समान हमारा पोषण और रक्षण भी करता है। वेदों के रचयिता हमारे पुरखों ने गाया कि आपोह ज्योति, अर्थात जल ही जगत और जीवन की ज्योति है। जल से ही संपूर्ण सृष्टि में जीवन का उजाला है। वेदों में जल और नदी पर संपूर्ण व विस्तृत पृथक सूक्त हैं, जिनमें जल को अमृत कहा गया है। वह साक्षात अमृत है जिसका पान कर हम सब जीते हैं। जल अमृत न हो तो हम सब मनुष्य, समस्त प्राणी, अन्न, वृक्ष, सकल चराचर मानो मृत ही हो जाए। तभी तो शुक्ल यजुर्वेद में ऋषियों ने गाया है आपोह ज्योति रसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुव स्वरोम, अर्थात जल ऊर्जा है, रस है, अमृत है तथा ब्रह्मांड में व्याप्त पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश है। भारत की सनातन धर्म परंपरा समूची सृष्टि के जन्म का मूल पांच तत्वों को मानती है। ये हैं जल, आकाश, अग्नि, वायु और भूमि। भारत की इस अनादि धार्मिक मान्यता को आगे चलकर आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। इन पंच तत्वों में जल मुख्य और प्रधान तत्व होकर सृष्टि करता है। पुराण प्रचलित पंच देवोपासना में भगवान गणेश जल तत्व के ही देवता हैं, अतः प्रथम पूज्य हैं। इस अर्थ में गणेश के बहाने जल को सृष्टि का कर्ता और प्रधान तत्व स्वीकार किया गया है। आधुनिक विज्ञान डार्विन के बहुचर्चित विकासवाद के आलोक में धरती पर जीवन के विकास की अवधारणा प्रस्तुत करता है, लेकिन इससे सदियों पूर्व भारत ने जलजन्य जीवन के विकास का अभिमत भगवान विष्णु के दशावतार के माध्यम से सामने रखा है।

जिसके 10 अवतारों के क्रम में पहला मत्स्य, दूसरा कच्छप, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां श्रीराम, आठवां श्री कृष्ण, नौवां गौतम बुद्ध और दसवां कल्कि अवतार मान्य है। यह अवधारणा प्रतीक है कि धरती पर जीवन का उत्स जल है। जल का सर्वव्यापी सुपरिचित जीव मछली है, इसीलिए मत्स्य प्रथम अवतार है। जीवन जल से धरती की ओर शने शने उन्मुख हुआ, अतः दूसरा अवतार कच्छप है। जीवन पूर्णतया धरती पर अवस्थित हो गया, इसे वराह अवतार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जीवन पशुत्व को त्याग कर धीरे धीरे मनुष्यत्व की ओर बढ़ा, इसका संकेत नरसिंह अवतार में निहित है, जिसमें ईश्वर अर्थात जीवन की मुखाकृति सिंह की और शेष शरीर मानव का प्रदर्शित हुआ है। कालांतर में अविकसित शरीर वाला मानव विकसित हुआ, जिसका प्रतीक वामन है। परशुराम के रूप में मनुष्य जीवन की देह तो पूर्ण विकसित हो गई, किंतु वह प्रायः हिंसक था। आगे चलकर श्रीराम के रूप में पूर्ण सुसंस्कृत मनुष्य धरती पर अवतरित हुआ और श्रीकृष्ण के रूप में उसके लालित्य और वैविध्य का प्रकटीकरण संभव हुआ। इन सारे प्रतीकों में जो मूल बात है वह यह कि समूची यात्रा जल देवता की कृपा से ही संभव हो सकी है। सनातन धर्म का विपुल वांग्मय केवल अध्यात्म का ही प्रवक्ता नहीं है, बल्कि जल के जरिए सृष्टि के सृजन, धरती पर जीवन के अवतरण, जीवन के विकास व विस्तार तथा जीवन के लिए जल की अनिवार्यता को जानकर उसके संरक्षण के प्रयासों का विज्ञान सम्मत इतिहास भी प्रस्तुत करते हैं। अमृत की प्राप्ति के निमित्त देव दानवों के सागर मंथन का पुराणोक्त उद्योग तो जल की महिमा का गान करने वाला अपने आप में एक संपूर्ण कथानक है। माना जा सकता है कि तत्युगीन वैज्ञानिकों को धरती पर निरंतर बढ़ते जन समुदाय के जीवन निर्वहन के लिए और अधिक परिमाण में पेयजल की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी और नदियों के अभाव के बीच भूजल की उपलब्धता का बोध न हुआ होगा, तब उन्होंने सागर की शरण ली होगी। सागर अनादि काल से जल राशि का भंडार है। आज भी धरती पर 70% से अधिक क्षेत्र में सागर है और उसकी तुलना में धरती अधिकतम 30% ही है। सनातन धर्म के पुराणों की वराह द्वारा धरती के उद्धार की कथा के प्रतीक संकेत कराते हैं कि सृष्टि के उस प्रारंभिक विकास काल में आज उपलब्ध धरती भी सागर के जल में ही डूबी हुई रही होगी। भगवान विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण कर यथासंभव धरती को रहने योग्य बनाया था, अतः धरती पर पेयजल के लिए सागर के जल ने ही तत्कालीन मनुष्य समाज को आकर्षित किया। पीने का पानी अर्थात अमृत सभी के लिए अनिवार्य आवश्यकता था, इसी कारण तब के लोग अपनी आपसी मतभेदों को भुलाकर इस प्रयास के लिए एकजुट हो गए, जिसका प्रतीक देवताओं और दानवों के इस उद्देश्य से एक हो जाने के संदर्भ में लिया गया है। पेयजल के संरक्षण के इन प्राचीन संदर्भों के साथ धरती पर गंगा अवतरण की एक कथा और महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्य के प्रतीक और प्रतिनिधि राजर्षि भगीरथ हैं। इसी कारण लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य के एकनिष्ठ अनथक अनवरत प्रयास के लिए आज भी भगीरथी प्रयास की कहावत प्रचलित है। बहुश्रुत कथा है कि भगीरथ के तप से गंगा धरती पर अवतरित होने को तत्पर तो हुई, मगर उसके वेग को सहन कर पाना धरती के लिए कठिन था। तब भगीरथ ने तपस्या कर भूत भावन भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा की धाराएं समेटी। माना जा सकता है कि भगीरथ और उनसे पूर्व उनके पुरखे गहन शोध के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि केवल आसमान से बरसने वाले जल के सहारे वर्ष भर धरती पर जल की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है।

जल के लिए ऐसे अखंड स्रोत की आवश्यकता थी जो निरंतर प्रवाहित रहें। इसके लिए बर्फीले हिमालय से एक जलधारा निकालकर उसे धरती पर लाने का उद्योग करना था। संभव है भगीरथ के पितामह अंशुमान ने अपने जीवनकाल में यह जतन किया हो पर सफल न हो पाए। तब भगीरथ ने इसका बीड़ा उठाया। संभव है कि वे अनेक बार हिमालय की चोटियों से जल धारा धरती तक लाए होंगे, लेकिन हर बार ये धाराएं पर्वत के शिखरों में खो जाती होंगी। शिवजी की जटाओं में गंगा के गुम हो जाने के रूपक को इसी अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। अंततः अनेक छोटी धाराओं को मिलाकर गंगा का धरती पर अवतरण संभव हुआ। आज भी हिमालय के गोमुख से गंगा की धाराएं मंदाकिनी, भगीरथी, अलकनंदा आदि नामों से निकलती हैं और अनेक उपधाराओं से संगम करती हुई गंगा के रूप में प्रकट होती हैं। गंगा अवतरण के अनुष्ठान में रह रहकर बाधाओं का उपस्थित होना प्रतीक है कि यह कार्य अत्यंत असाधारण था, लेकिन भगीरथ की संकल्प शक्ति से आखिरकार साकार हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ। यह दिन प्रायः पूरे उत्तर भारत में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और इस बहाने नदी मात्र के प्रति उनके असीम और जीवनदायी जल भंडार के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। महत्वपूर्ण है कि इसके ठीक अगले दिन निर्जला एकादशी होती। निश्चित ही यह अनुपम व्रत विधान हमारे ऋषि मुनियों ने एक अनुकरणीय संदेश के लिए किया था कि यदि धरती पर प्रचुर जल उपलब्ध हो तब भी उसके उपयोग में सावधानी बरतें, जल को अनावश्यक खर्च न करें, उसका सदुपयोग करें, संचय करें, उसके भोग के प्रति दायित्ववान रहें। जल के संबंध में जो सूत्र और सीख परवर्ती अनेक धर्म धाराओं में अभिव्यक्त हुई, सनातन धर्म अनादि काल से उनका पारायण कर रहा है। हमारे यहाँ आकाश से पाताल तक, धरती से कणकण तक जीवन रूपी जल की स्वीकार्यता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अपनी पुस्तक बूंदों की संस्कृति में भारत की पारंपरिक जल संचय प्रणालियों के विकास और ह्रास की कहानी छापी है, जिसके संदर्भ बताते हैं कि भारत में बहुत पहले से नाना विधि जल संचित किया जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा में मानसून के पानी को संचित करने के जलाशय थे और जल निकासी की व्यवस्था थी। अनुपम मिश्र की बहुचर्चित पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब इस तरह की अनेक जल संचय प्रणालियों का एक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। चिंता और चुनौती यह है कि आज के दशक में पहले तक जो समाज जल के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और सचेत था वह आज दुर्लभ है। परिणाम स्वरूप वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण नहीं हो पा रहा और भूजल हम 85% से अधिक तक उलीच चुके हैं। प्रदूषण के कारण नदियां लुप्त हो रही हैं और जल भंडार क्रमशः तेजी से रीत रहे हैं। भारत में कुल जनसंख्या के 65% से अधिक लोगों के पास मोबाइल तो है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का शुद्ध पानी बमुश्किल 20% लोगों को ही सुलभ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जिस देश में नदियां माता कहकर पूंजी जाती हों, वहीं पर वे माताएं अनेक कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। जिस भारत भूमि में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है, वहां बोतल बंद पानी का सालाना कारोबार अरबों रुपए तक पहुंच गया है। इसका बड़ा कारण जीवन के लिए जल के महत्व को जानते बूझते हुए भी उसकी अनदेखी, गैर जिम्मेदारी और बेतहाशा फिजूल खर्ची है। लगभग यही हाल पूरी दुनिया का है, जिसके पेयजल भंडार सिकुड़ते जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। ऐसे में हमारे धर्मग्रंथों के सूत्र हमें नए सिरे से जल जागरण की प्रेरणा दे सकते हैं और यह आग्रह करते हैं कि हम जल के प्रति जिम्मेदार रहें, जितना संभव हो, जितने प्रयासों से संभव हो, जल को संरक्षित करें। अंत में आधुनिक हिंदी कविता के महान वैष्णव कवि श्री नरेश मेहता की किताब उत्सवा से जल पर ये कुछ पंक्तियां। निश्चित ही

तुम भूल गए होंगे कि ग्राम में जलो वाले ये नदी नाले पोखर बावड़ी अर्थात जल मात्र कुटुंबी जन है। कन्याओं ने अपनी अल्हड़ता, वधुओं ने अपना काम प्रसाधन इन्हीं एकांत संकोची जलों में निहारा है और अपनी खिलखिलाहट इन जलों को सौंपी है। इन जलों में शवों का अंतिम स्नान भी हुआ है। बंधु, जल का स्वरूप नहीं, धर्म देखा जाता है।

अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण। इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर विवेक चौरसिया की वार्ता। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, आज सुनहरे पल कार्यक्रम में हम फिल्म जगत के दो दिग्गज कलाकारों को याद कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करें हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जिन्होंने अपनी अदाकारी और मुस्कान से करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। हिंदी फिल्म के उस अभिनेता को प्यार से लोगों ने कहा जुबली कुमार, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाती थीं।

राजेंद्र कुमार केवल एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि संवेदनशील अभिनय, सादगी और पारिवारिक मूल्यों के प्रतीक थे। कहते हैं कि सफलता मेहनत और धैर्य का दूसरा नाम है। राजेंद्र कुमार ने इसे सच साबित किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहज और भावपूर्ण अदाकारी। वे पर्दे पर प्रेमी बने, आदर्श पुत्र भी, त्यागी मित्र भी और जिम्मेदार पति भी। उनकी आंखों की मासूमियत और चेहरे की शालीन मुस्कान दर्शकों को अपना बना लेती थी।

0: 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्मों के गीत, उनकी सादगी आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का अमूल्य हिस्सा है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
8: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
9: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
8: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
9: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
8: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
10: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के दूसरे महान कलाकार जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं वो हैं जिनके नाम मात्र से किसी जमाने में दर्शकों के मन में डर पैदा हो जाता था, लेकिन वास्तविक जीवन में वे उतने ही विनम्र,

स्नेही और संवेदनशील इंसान थी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता प्राण की। प्राण ने अभिनय की ऐसी मिसाल कायम की कि खलनायक की भूमिका भी नायक जितनी ही लोकप्रिय हो गई। उनकी आंखों का तेज, दमदार संवाद अदायगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व और हर किरदार में नई शैली, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी।

श्रोताओं, प्राण केवल खलनायक नहीं थे, वे अभिनय के विश्वविद्यालय थे। चरित्र अभिनेता के रूप में उपकार के मलंग चाचा और जंजीर के शेर खान के किरदार को लोग कभी नहीं भूल सकते। प्राण कृष्ण सिकंद, 12 जुलाई 2013 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेश

0: ऐसे पौधे लगाएगा जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित APMC सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और RKBK के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: सेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2 5-7 हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And finally, historic Gurudwara in Lahore associated with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji, built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शिखा साहू।
3: कल के सितारे बच्चे हमारे। कल के सितारे बच्चे हमारे।
4: बच्चों जय हिंद।
5: जय हिंद।
4: रविवार के साथ ही आ गई हूँ मैं आपकी अपनी शिखा दीदी, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।
3: कल के सितारे बच्चे हमारे।
4: बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत कुछ लाइनों से करूंगी कि छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, अच्छे संस्कार ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं, जो सीखते हैं हर दिन कुछ नया मुस्कुराकर, वही बच्चे कल दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। बच्चों सुबह की ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की मीठी चहचहाट और रिमझिम बारिश की बूंदे हमें यही सिखाती है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर सुबह हमें कुछ अच्छा करने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। आप जानते हैं बच्चों, जीवन की बड़ी सफलताएं किसी एक दिन से नहीं मिलती, वो तो छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अपनी किताबों और आसपास की चीजों को सहेज कर रखना, प्रकृति से प्यार करना और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, यही छोटी छोटी आदतें बच्चों आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन कम से कम एक अच्छी आदत को हम जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आज की अच्छी आदतें ही बच्चों हमारे कल के उज्जवल भविष्य की नींव होती है। तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, तो आपसे उनका परिचय करवाऊंगी और उन्हें मिलवाऊंगी इस गीत के बाद।

0: बोलना
1: तो बच्चों, जैसा कि गाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ नए दोस्तों से, तो आइए सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, उनका नाम जानते हैं और वो हमें क्या बता रहे हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्ना दोस्त भुवेक पांडे।
1: क्या बात है भुवेक, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। बताइए भुवेक, आज आप क्या बताने वाले हैं बच्चों को?
2: आज मैं आपको एक ऐसे खास दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी धरती को हरा भरा और साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देता है। इस दिन का नाम ये विश्व पेपर बैग दिवस, जिसे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है।
3: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से सामान लाने के लिए जो प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनका बाद में क्या होता है? प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, तो यह मिट्टी, नदियों, समुद्र और हवा तक को प्रदूषित करती है। कई बार तो गाय, कुत्ते, पक्षी और दूसरे जानवर भी प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक जा सकती है। दीदी, इसलिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को यह याद दिलाता है कि अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल दे तो धरती को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। इस अभियान को कई देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और जागरूक नागरिकों ने बढ़ावा दिया, ताकि लोग प्लास्टिक की जगह कागज और कपड़े को थैलों का उपयोग करने की आदत अपनाएं। अब सवाल यह है कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी मम्मी पापा के साथ बाजार जाएं, उन्हें कपड़े या पेपर बैग ले जाने की याद दिलाएं। स्कूल में पुराने अखबारों से सुंदर पेपर बैग बनाना सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। किसी भी कार्यक्रम या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास के लोगों को भी

0: बच्चों अब आपको मिलवाती हूँ माही से। तो माही बताइए आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाली हैं?
1: नमस्ते दीदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं आज आप सबको एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। मैं सब दोस्तों को बता दूँ कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया है। दीदी वो गीत मैं अब आप सबको सुनाती हूँ। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो

बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं।

0: झुककर तुम अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू दीदी।
1: कितना खूबसूरत गीत है माही ये। और बच्चा सबसे अच्छी बात कि आपने इसे गाया भी बहुत खूबसूरती और मासूमियत से है। अच्छा माही, हम सब जानना चाहते हैं कि ये गीत आपको किसने सिखाया?
0: दीदी ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया था। हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था तो वहाँ हमने ये गीत गाया था।
1: अच्छा अच्छा माही, आपने इस गीत में गाया कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, तो माही इस गीत से, इन शब्दों से, इन लाइनों से आपने क्या सीखा?
0: दीदी ये गीत हमें शिक्षा देता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपना अच्छे से काम करते रहना चाहिए।
1: बहुत खूब माही, अब आपने इतना अच्छा और प्रेरणादायक गीत हमें सुनाया, हम आपके लिए क्या करें बच्चा?
0: दीदी अब क्या आप हमें एक गीत सुनाएंगी?
1: बिल्कुल सुनवाते हैं एक बहुत अच्छा सा गाना यहाँ पर, और आपके लिए और आपके गीत के लिए हम सभी मिलकर बजाते हैं ढेर सारी तालियां।
0: ठीक है दीदी, थैंक यू।

0: बच्चों अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नंदिनी। तो आइए स्वागत करते हैं नंदिनी का। तो नंदिनी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे में। बताइए नंदिनी आज आप हमें क्या बताने वाली हैं?
1: दोस्तों मेरा नाम नंदिनी पाटिल है, मैं शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों बारिश तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बारिश एक जैसी नहीं होती। आसमान से गिरने वाली बारिश का रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। आइए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ बारिश के कुछ मज़ेदार नाम। सबसे पहले ड्रिजल के बारे में बताती हूँ। जब बहुत हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश होती है तो उसे ड्रिजल कहते हैं। दोस्तों जब थोड़ी देर के लिए अचानक तेज़ बारिश हो और फिर रुक जाए तो उसे शार कहते हैं। दोस्तों डाउनपोर, जब बहुत तेज़ और लगातार बारिश हो उसे डाउनपोर कहते हैं। अब क्लाउड बस्ट के बारे में बताती हूँ। जब बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, इसे क्लाउड बस्ट या बादल फटना भी कहते हैं। अब बताती हूँ बारिश के सबसे सुंदर मिस्ट के बारे में। यह बारिश नहीं बल्कि हवा में तैरती बहुत महीन पानी की बूंदें होती हैं, जिन्हें हम मिस्ट या हल्का कोहरा कहते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं फॉग के बारे में। जब कोहरा इतना घना हो जाए कि दूर की चीज़ें दिखाई ना दे उसे फॉग कहते हैं और हम यह अक्सर सुबह सुबह देखते हैं। अब बताती हूँ स्लीट के बारे में। जब बारिश की बूंदों के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे कण भी गिरे तो वह स्लिट होता है। अब स्नोफॉल के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों जब बारिश की जगह बर्फ़ गिरे तो वो होती है बर्फ़बारी यानी स्नोफॉल। अब सबसे सुंदर बारिश, जिसे हम सनशार कहते हैं। जब धूप भी निकली हो और उसी समय बारिश भी हो रही हो तो वो होता है सनशार। और हम रेनबो भी सनशार में ही देखते हैं। इसके अलावा एक होती है मॉनसून रेन। बरसात के मौसम में होने वाली नियमित वर्षा को मॉनसून रेन कहते हैं। तो दोस्तों अब अगर कोई पूछे कि बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इट्स रेनिंग ही नहीं बल्कि यह भी बता सकते हैं कि ड्रिजल, डाउनपोर, क्लाउड बस्ट या सनशार हो रही है। बारिश के भी कितने रंग और कितने नाम होते हैं। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है दोस्तों।
0: अरे वाह नंदिनी, आपने तो इस मौसम के हिसाब से जितनी भी बारिशें होती है उन सबके बारे में इतनी अच्छी जानकारी कलेक्ट की। और वाकई बच्चों हमेशा इट्स रेनिंग बोलना ठीक नहीं है, तो नंदिनी ने जिन शब्दों को बताया है हमें उन शब्दों को ध्यान रखना है, उन्हें सीखना है और उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करना है। तो नंदिनी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे नंदिनी, भुविक और माही। तो बच्चों आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए दोस्तों के साथ आपके साथ मिलेंगे। कहाँ? यही आपके मनपसंद कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे में। तो अभी स्वीकार कीजिए शिखा दीदी का टाटा बाय बाय और जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: कल के सितारे बच्चे हमारे। कल के सितारे।
3: श्रोताओ ये था कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चे थे भुविक पांडे, माही विश्वकर्मा और नंदिनी पटेल। कार्यक्रम लेकर आपके बीच आई थी शिखा साहू। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे तनिष्का कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा।
5: क्यों? क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए लोक संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं फतेह सिंह परमार राही।

0: लोक संगीत में अभी आपने फतेह सिंह परमार राही के गाए निमाड़ी लोकगीत सुने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के बाद आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई एक और गजल।

श्रोताओं, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गजलें आप शाम 6:30 बजे भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए अब सुनिए पंडित यशवंत बुआ जोशी का राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। 3 ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं बलम मुरी छोड़ कलाई। गायन में साथ दे रहे हैं संदीप देशमुख। तबले पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र अंतारकर और हारमोनियम पर मोहन मुंगे।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने पंडित यशवंत बुआ जोशी का राग विलासखानी तोड़ी में ख्याल गायन सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख है लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

निर्देश भी दिए। नगर परिषद डिंडौरी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली पवित्र एवं स्वच्छ निर्मल नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया एवं नगर परिषद आयुक्त की पहल पर मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से संचालित सीवर योजना के अंतर्गत शहर के 8 प्रमुख नालों का दूषित जल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उसका उपचार कर पुनः उपयोग किया जा रहा है। सीवर योजना के प्रारंभ होने से पहले नगर परिषद क्षेत्र के 8 प्रमुख नालों से प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूषित पानी सीधे नर्मदा नदी में मिलकर नदी को प्रदूषित कर रहा था। कृषि विभाग द्वारा एफआरए के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्राप्त कृषकों से अपील की गई है कि वे खरीफ मौसम में उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई टोकन प्रणाली का उपयोग करें। ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से कृषक निर्धारित तिथि एवं समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिले में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उर्वरक भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। राज्य नीति आयोग की प्रभारी एवं शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने आकांक्षी विकास खंड करंजिया में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र डिंडौरी द्वारा डीपीआई आईटी एवं एमपी स्टार्टअप सेंटर के सहयोग से 8 जुलाई को जिला स्तरीय तेजस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले के युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप, उद्यमिता, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला में एमपी स्टार्टअप सेंटर के विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप इंडिया, उद्यम पंजीयन, नवाचार, इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की विस्तृत जानकारी दी गई। डिंडौरी जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए संचालित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए जिले की टीम को बीते 28 जून को आरसीपीवी नरोना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में बीते दिनों जल संचय एवं जनभागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के तहत जिले की 364 ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी से हुए जल संरक्षण के कार्य संपन्न हुए, जिससे कुल 31,21,200 घन मीटर जल संग्रहण क्षमता का विकास हुआ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, जिसमें डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा स्थित शासकीय आश्रमशाला अंग्रेजी माध्यम को स्थान मिला है। ये जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विद्यालय ने स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और हरित परिसर निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। जिला परियोजना समन्वयक दिवाकर तिवारी ने बताया कि चयनित विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जुलाई माह में जिले में डेंगू निरोधक माह चल रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पांडे के निर्देशन में डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर बीते दिनों रवाना किया गया। ये डेंगू रथ जिले के सभी विकास खंडों, शहरी क्षेत्रों, पंचायतों एवं हाट बाजारों में भ्रमण कर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव संबंधी जानकारी दे रहा है। जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के, ये आकाशवाणी भोपाल। लीजिए प्रस्तुत है
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए टेलीफोन नंबर नोट करें। टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि जिन श्रोताओं के फोन पिछले कार्यक्रमों में लग चुके हैं, कृपया वे कुछ सप्ताह का अंतराल रखें। और अब लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार दलील जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, और जिस जिससे भी आपकी मुलाकात हो, कुछ इस तरह से हो कि हर मिलने वालों को आपकी याद आती रहे।
0: क्या बात है, अब अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, नजरों से कह दो प्यार मिलने का मौसम आ गया।
0: जी जी, बहुत अच्छा गीत है और मौसम के अनुरूप है। आप बताएं अपने बारे में।
1: जी, सिलाई करते हैं मैडम और आप लोगों के सब प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी, तो चलिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद मंसूरी जी फोन करने के लिए।
1: जी शुक्रिया।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का

0: हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।
4: हेलो नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते,
4: मैं जतका किशनपुर से आलम दिलकश बोल रहा हूँ।
3: जी जी, आपके खत हम तक मिलते रहते हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
4: मैं हमेशा खत भेजता हूँ।
3: जी जी,
4: फिल्म का नाम है आग और सोलह।
3: जी,
4: आवाज मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की।
3: हाँ जी,
4: आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम।
3: जी जी जी, ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। आपकी सुबह कैसी रही?
4: अच्छी रही दीदी।
3: अच्छी रही, क्या करते हैं आप?
4: प्राइवेट नौकरी करते हैं।
3: अच्छा,
4: बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ।
3: अच्छा अच्छा, और वहाँ प्राइवेट नौकरी करते हैं। बिहार कब जाना हो पाता है?
4: वो गर्मी की छुट्टी जब होती है ना तो जाते हैं,
3: गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। अच्छा अच्छा, और
4: आप कौन बोल रहे हैं दीदी?
3: मैं शालिनी बोल रही हूँ।
4: अच्छा शालिनी दीदी, हाँ
3: हाँ जी। और छठ के समय नहीं जाते?
4: छठ के समय नहीं जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा,
4: उस समय इतना भीड़ होता है कि हद से ज्यादा,
3: हद से ज्यादा भीड़ होता है। बिल्कुल सही बात है
4: जी
3: जी।
4: हम लोग ईद और बकरीद के मौके से जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
4: आपको भी धन्यवाद दीदी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: फिल्म है मिलन
0: जी, गीत के बोल।
1: सावन का महीना,
0: पवन करिश्वर।
1: हाँ हाँ
0: जी जी जी।
1: नाम अनोखी सिंह
0: जी। अनोखी सिंह जी, कैसी बारिश है आपके उधर?
1: ये तो मौसम विभाग बताएगा सर जी, हम क्या बताएंगे।
0: नहीं, अभी तक पानी कैसा गिरा है? अच्छा गिरा है
1: क्या? हमारे यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल ही है, थोड़ी सी गर्मी को हल्का सा दबाया 25%।
0: अच्छा, अच्छी बारिश नहीं है अभी?
1: हाँ, हमारे बाग ब्लॉक में अच्छी बारिश
0: नहीं हुई है। चलिए अनोखी सिंह जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और सर जी
0: हाँ जी बोले।
1: आप कहते हो कि जिन श्रोताओं के फोन लग गए वो नहीं लगाए, और आप पहला फोन उन्हीं का उठाते हो जिनका फोन लगा हुआ है।
0: देखिए, फोन उठाना हमारे हाथ में नहीं है, जो फोन आता है वही उठाते हैं।
1: सर जी आप 2 मिनट पहले फोन उठा लेते, आपको सब जानकारी रहती है।
0: देखिए, हम किस कैसे फोन काटें सबका।
1: देखो हमारा भोपाल है नहीं, नाम लिख के रखता है कि इस दिन किनके फोन लगे क्या लगे, और आप भी ऐसा एंट्री करो। आप
0: ठीक है, अब आपकी सलाह हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, एंट्री करेंगे उन लोगों के जिनके फोन लग चुके हैं, उनके फोन नहीं लगाएंगे, कोशिश
1: भोपाल
0: करेंगे
1: कर
0: उनके।
1: रहा है एंट्री,
0: जी जी
1: भोपाल तो कल ही रहा है नहीं एंट्री।
0: अच्छा, ठीक है, आपका सुझाव हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। अनोखी सिंह जी, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ मैडम, राज सर्विस बोल रहा हूँ, उदयपुर, उज्जैन माता की नगरी से।
0: जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग।
0: तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग। बताएं उज्जैन नगरी के क्या हाल है?
1: मौसम बना हुआ मैडम, पर बारिश नहीं आ रही 4 दिन से। हाँ,
0: अच्छा, उसके पहले अच्छी बारिश हुई है?
1: उसके पहले अच्छी बारिश हुई है, पर 4 दिन से थोड़ा सा मौसम बना हुआ है, पर बारिश बिल्कुल नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही बस।
0: ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी, 14 तारीख से शायद मौसम फिर से बदलने का अनुमान है और
1: अच्छा है
0: फिर
1: तो
0: बारिश होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बारिश बहुत जरूरी है अभी।
0: बारिश बहुत ज़रूरी है। इस साल
1: हाँ
0: पानी
1: बिल्कुल
0: की काफ़ी दिक्कत बहुत सारे क्षेत्रों में हुई है।
1: बिल्कुल मैडम, कहीं
0: जी
1: पे इतनी बारिश हुई कि हालत खराब है, कहीं पे इतनी कम बारिश हुई तो वो परेशान है, दोनों चीज से। बिल्कुल
0: दोनों चीज़ से परेशान है। जी
1: बिल्कुल,
0: धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ दीदी।
0: जी जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: गीत आज दीदी राजेंद्र कुमार जो महान अभिनेता जिनको जुबली कुमार के नाम से भी जानते हैं हर श्रोता और हर मतलब कलाकार मतलब सब जानते हैं उनको, उनकी
0: जी जी।
1: आज पुण्यतिथि है आज 12 जुलाई की।
0: अच्छा,
1: राजेंद्र कुमार महान अभिनेता की उनकी एक फिल्म में आप आए बाहर आई उनका गीत सुनवा दीजिए दीदी। ये सारे जमाने में ऐसा गीत है आप आए बाहर आई टाइटल सॉन्ग है। रफी साहब
0: अच्छा,
1: की आवाज पर रफी साहब की भी पुण्यतिथि आ रही है 31 जुलाई की।
0: हाँ जी,
1: तो उनको भी समर्पित है ये गीत और सब श्रोता उनकी ओर से उनको नमन करते हैं राजन कुमार जी को भी और रफी को।
0: जी जी चलिए आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद
1: धन्यवाद।
0: का गीत। धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हॉटलाइन
0: हाँ जी
1: जी, मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ खंडवा
0: जी
1: से। जी,
0: जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: मुझे सुना है फिल्म दोस्ताना का
0: दोस्ताना का कौन सा
1: गीत।
0: गीत?
1: गीत का बोले हैं, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत
0: सलामत
1: रहे
0: रहे।
1: दोस्ताना हमारा।
0: जी जी
1: और मैडम जी, आपको और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी जी आपका
1: और
0: नमस्कार सब तक पहुंचा है।
1: आकाशवाणी परिवार को भी मेरा दिल से शुक्रिया,
0: जी
1: और जो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं। और
0: जी
1: उसके बाद में मेरे मन भाव में खर्च क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं?
0: ये शिकायत आप ईमेल से कर सकते हैं, खत लिखकर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो बुधवारी पत्रोत्तर कार्यक्रम में आप अपनी शिकायत, जो भी आपकी शिकायत है, वो आप ज़रूर भेजिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, आपके फोन लगातार लगते हैं, बताएं कौन
1: अभी
0: सा
1: तो
0: गीत सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है दीवाना।
0: दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
1: तेरे दर्द से दिल आबाद रहा।
0: जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद सूर्य प्रताप जी।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: आवाज आ रही मेरी आपको?
0: हाँ जी, आवाज आ रही है
1: हॉटलाइन में। मैं कारुंडा छोटी सादड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ
0: जी। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: रतनलाल सुथार
0: जी। रतनलाल जी, गीत के बोल बताएं।
1: गीत के बोल है, मैं एक लाइन गुनगुनाता हूँ
0: जी।

0: बहुत अच्छा गीत है, मुकेश का गाया हुआ
1: जी,
0: धर्म करम फिल्म
1: का नाम ले लो हमारे बच्चों का।
0: हाँ जी बिल्कुल बताएं।
1: हमारे भांजे है नया गांव के सिरपुरा में, मार्ची किसान, हिमांशी किसान और हिमांशी के पप्पा है पंकज जी किसान, मनोज जी किसान
0: जी जी,
1: नया गांव के सिरपुरा।
0: आप सब साथ में मिलकर रेडियो सुन रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: आपके उधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर मौसम अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश ठीक
1: हुई हमारे अभी नहीं हो रही, अभी हवाएं चल रही है बहुत तेज।
0: अच्छा अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में अच्छा मानसून हो, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत है मिथुन का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म आई मिलन की रात का ये गीत। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण के, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का

प्रसारण साझा लाइक कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म शेषनाग से, स्वर थे अनुराधा पुडवाल और सुरेश वाटकर के। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म सौगंध का ये बहुत प्यारा सा गीत जिसे गाया है अनुराधा पुटवाल और मोहम्मद अजीज ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

लीजिए, अब सुनिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत, जिसे लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है राजकमल ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मोहरासी, स्वर अलका याग्निक और उदित नारायण की। ये गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है बिजू शाह का।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मोहब्बती से। स्वर है लता मंगेशकर और उदित नारायण के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लाहार से आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर कल से मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। एनीमिया, बाल और किशोर स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित पहले वेबिनार में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक गुम इंसान के प्रकरण में अनिवार्य रूप से FIR पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत है कर्ज फिल्म का मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से, और मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

गीत आप सुन रहे हैं जुदाई फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत की फरमाइश की है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने।

शिवाजी चौक, राजस्थान छत। राजस्थान से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा, छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। देवास से रानू गुप्ता और सागर से नंदिनी तिवारी। आप सब ने पसंद किया है हरजाई फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, निदा फाजली का गीत और संगीत राहुल देव वर्मन का।

अगला गीत कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवार नारायणपुर बाबापट्टी बलियासी ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, कंवर कॉलोनी बड़वाप से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य श्रीमाली, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा अपने पराए फिल्म से, आवाज़ यशुदास और साथियों की, योगेश का गीत और बप्पी लहरी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:25 होने को हैं। सुनते हैं ये संदेश।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
6: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
6: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
6: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
9: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 आकाशवाणी भोपाल पर।
10: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
11: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर

0: भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 11वीं कड़ी।

0: मना लो।
1: कठिन हो गई, लोग बड़े अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करने लगते हैं जब से, हालांकि कुछ हीरो जिनकी चांद है और बढ़िया टॉप चल रहे हैं, जब से कुछ लोग कंगी करते वक्त अपने आप को उस हीरो से तुलना करने लगे, तो कुछ लोगों के चेहरे में चमक दिख जाती है कि भैया उसके भी है चांद है, अपनी भी चांद है, कोई बात नहीं। किंतु बाकी लोग आपने देखा होगा कि पूरे सामने से साफ, पीछे थोड़े से बाल, और उनको बड़ी स्टाइल से ऐसा ला कर पीछे से सामने तक चिपका देते हैं, ऐसा चिपका देते हैं, और अगर उसमें डाई काले कर दिया हो तो ऐसा लगता है जैसे डामलीकरण किया गया, जैसे कहीं रोड पर अलग से थेगरा सा नहीं लगा देते हैं, थोड़ा सा गड्ढे को भरा गया डामलीकरण, वह ऐसा करके चिपका देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मांग अपने आप बीच से निकलने लगती है। अब आप उनसे पूछो क्यों या क्या हो गया, अरे यार अजीब बीमारी हो गई। क्या अजीब बीमारी? अरे यार ये मांग जो थी जी खिसक खिसक के बीच में आ गई। कई लोगों की चांद निकलती है और वो दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यहां जो साफ हुआ यहां दाढ़ी बढ़ गई, लोगों कब गया साफ, तो पैसा कमा रहे हो यार, काय है बिल्कुल गजब यार, काय का पैसा भैया। अरे तो अब जी देखो चांद, अरे का चांद, वो दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली यार आपने, दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली, जो बीमारी अजीब सी हो गई, का बीमारी हो गई, अरे जी बाल पूरी तरह से निकल आए। एक चांद वाले भाई साहब से हमने पूछा कि भाई साहब आपकी चांद है, आपको क्या परेशानी होती है? बोले कुछ नहीं भैया, जब मैं सुबह मौत होता हूँ तो ये समझ में नहीं आता चेहरा कहाँ तक है। चांद निकलने से चेहरे की क्रीम और इसके खर्चे अलग बढ़ जाते, ऊपर तक की व्यवस्थाएं अलग बढ़ जाती है। महिलाओं के तो वैसे बहुत कम चांद निकलती है, अगर निकलती हो तो आप कल्पना करो कि कितना खराब लगेगा, और अगर चांद निकलने लगे तो ये जो हिंदुस्तान की परंपरा घूंघट वाली जो परंपरा महिलाएं भूल गई हैं वो फिर से अपने आप चालू हो जाएगी।
2: बहुत बढ़िया।
1: जब लोग कहेंगे कि देखो रामलाल की बहू कितनी होशियार है, बिल्कुल हमेशा घूंघट डाली रहती, फालतू बात नहीं करो कि बाल

0: लगे चांद नकलाई ये सब डाल। नकली बाल लगाने की भी अब व्यवस्थाएं खूब बढ़ती जा रही हैं। आए दिन आप लोग देखते हैं कि नकली बाल लगा के, अब कई बार क्या होता है कि अपन मान लो हमेशा किसी को बिग में देखते हैं, बिग लगाए हुए देखते हैं, और उसके घर पहुंच जाए और वो मान लो बिग नहीं लगाए हुए, तो अपन अब उसी से पूछ रहे का भी हाँ भैया कहाँ गए, आओ ना राजेश भाई आओ ना, नहीं नहीं भैया कहाँ बड़े भैया, अरे आओ यार पहचान नहीं रहे, नहीं पहचान गए ना आप तो हम, मतलब श्यामू भैया के पिताजी कहलाए ना, अरे नहीं यार हम ही, अरे आप बाल, अरे बिग था ना, अरे यार भैया आज तक समझे भी नहीं आया। अब ऐसे लोगों की अगर शादी हो जाए तो जब लड़की देखने गए तो बढ़िया बिग लगा के गए, बिग लगा के गए, बड़ी बहुत बढ़िया भैया यार गजब के बाल है, अरे आज के समय में ऐसे बाल यानी देखो लड़का जरूर अच्छा खाते पीते उसका है, जब तो उसके इतने बाल हैं। शादी हुई, पगड़ी लगाई, पगड़ी में भी वो अपना संभाले लड़का, कमल दब अपने कल में दबाएगी जिसमें बिग ना खिसक जाए, पगड़ी उतरती जाती रही। दूसरी विदा के टाइम पे अब ये बात कैसे पता चली कि जब एक जिसके बाल नहीं थे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आपके बाल नहीं थे आपकी शादी कैसे हुई, बोले नकली बिग बाल लगा के गया लड़की देखने गया, अच्छा फिर क्या हुआ लड़की पसंद आ गई, अच्छा ठीक फिर उसके बाद कह ले मैं दूसरी विदा कराने गया, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या जबलपुर गया भैया दूसरी विदा में, तो अब लोग बोले कि जिया जी ग्वारी घाट चलो नर्मदा किनारे नहाने के लिए, तो मैंने कहा भैया मैं नर्मदा जी चलूंगा जरूर किंतु नहाऊंगा नहीं, कनेक्टिव आंसर क्यों बोला आपने, नहाते तो यार क्या है कि अब बाल उतारना पड़ते तो समझ में आ जाते कि जीजा टकला है, इस चक्कर में अपन ने कहा कि मैं नहाऊंगा नहीं सिर्फ दूर से प्रणाम करूं, साले लोग कहने चलो जीजा नहाना नहीं नर्मदे हर करके चले आना। मैं गया भैया, अब जब मैं गया तो बढ़िया साले लोग ने बोला अच्छा जिया जी नहाना नहीं किंतु तेल लगा लो मालिश बढ़िया नर्मदा किनारे माँ के दर्शन, और कहने जबरन कहने यार डुबकी लगवा दी, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, अब वो जीजा थोड़ी देर बाद लगे चिल्लाने जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो, कहने हाँ अब हमारे बाल बहे जाए अभी लड़का हमारे साले पीछे पीछे तैरत जाए जीजा बहगो जीजा बहगो, फिर कहा हमने कही हम तुम्हारे जीजा, तो कहने हमें इतनो मारो यार कहले टकला जीजा बन रहा, फिर अरे फिर क्या, अब 20 दिन हो गया भाई साहब अभी तक परेशान है, मेरी बीवी भी मानने तैयार नहीं है, वो भी कहती नहीं वो उनके तो बहुत अच्छे बाल थे आप तो टकला हो, तो कहने भाई साहब ऐसा है बिग लगाने से फायदा भी है तो नुकसान भी है, हमने हाँ भाई साहब ये तो आपने अच्छा बता दिए मेरे भी बाल अब कम हो रहे हैं तो मैं कभी बिग नहीं लगाऊं, कहने बिल्कुल मत लगाओ जो ईश्वर ने जैसा दिया वैसे ही रहो उसी रूप को प्राप्त करते रहो ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। तो ये बात हुई जिनके बाल नहीं है या जिनके बाल झड़ने वाले हैं उनके लिए मैंने आपके बीच में हास्य व्यंग प्रस्तुत किया। लीजिए हंसना मना है इस आकाशवाणी के कार्यक्रम में, आपको एक और व्यंग की ओर ले चल रहा हूँ कि वही चीज आप लोग सुनते हैं वही चीज हम सुनते हैं वही चीज आप देखते हैं वही चीज एक व्यंग्यकार हास्य कलाकार देखता है, तो उसके नजरिए को हम प्रस्तुत करते हैं और फिर बात होती है कि हंसना मना है। तो कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 3 पर रेलवे स्टेशन पर, वो आप कैसा सुनाई आपको दे रहा है ये मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो अनाउंसमेंट सुनाई देता है वो बड़ा साफ सुनाई देता है, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो अनाउंसमेंट होता है वो इतनी दूरी हो जाती है कि हमको कुछ अजीब सुनाई देता है, 3 नंबर प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है, 4th प्लेटफार्म नंबर पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है, 5वें का अनाउंसमेंट हमें कुछ समझ में नहीं आता। प्लेटफार्म नंबर 1,
1: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: बड़ा साफ सुनाई देता है। अब याद करिए प्लेटफार्म नंबर 2,
2: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे इन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: 3 नंबर में आवाज और अजीब हो जाती,
2: बॉम्बे से हावड़ा की ओर

0: Ông ta đã nói sợ bà mẹ đi ăn cho ông bà phải hảo ăn cho ông ta lẽ ông ta sẽ chụp lắm.
1: चौथे का अनाउंसमेंट और अजीब होती
0: है।
1: पांचवे का अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आती। जिसको जहां जाना वहां चला जाए। अनाउंसमेंट खत्म होता है, लाइन लगना शुरू हो जाती, लाइन कहीं की भी हो, चाहे टाकीज की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे रेलवे लाइन हो, लाइन एक सी होती है। इसमें अजीब अजीब आवाजें आपको सुनाई देने मिलती हैं। प्लेटफार्म में आवाज आई,
0: चाय वाला, आलूबंडाई समोसा वाला,
1: ए आलूबंडा इधर उधर खिलाओ खिलाओ,
0: कितना कड़वा है यार।
1: अरे बाबू साहब बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसी बात कर रहे हैं, कड़वा कड़वा। अरे भैया कड़वा लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अरे बाबू साहब बिल्कुल, आप कैसा करते हैं, आप दो दिन पहले निकले थे, आपको खिलाया था ना। हाँ खिलाया था, उस दिन तो बड़ा अच्छा था, उसी दिन वाला तो आज है ये। लाइन लग जाती है, लाइन लगने, अरे भैया, अरे बाप रे, धक्का नहीं देना, कैसा कर रहे, ओ भाई साहब, ए धक्का मत देना, ओ भैया। एक भाई साहब खड़े थे, उनके दांत काफी बड़े थे, कहले भैया धक्का मत दो, सामने वाले की पीठ में दांत घुस जाएंगे। एक भाई साहब काफी मोटे थे, उन्होंने कहा ओ भैया ओ मोटे, धक्का मत दो भैया, मोटे जी धक्का मत दो जी, मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ।
2: अरे बाप रे, कंठा कर रहे यार, अरे भैया।
1: ये लाइन खत्म होती है, रेल ट्रेन आकर रुकती है और हम और आप दौड़ पड़ते हैं अपनी सीट के लिए। है भाई साहब जी जी, पेपर मेरा रखा था, मैंने रखा था, देखिए गलत बात मत करिए आप। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये पहले से मैं इतने दिन से इसी सीट में बैठ के आता हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, आप बात कैसी कर रहे हैं। वो ठीक है भैया, ये मैं यहाँ बैठा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं डिब्बे के अंदर। एकदम से अंधेरा हुआ, अंधेरे के साथ साथ अब आप डिब्बे के अंदर जब बैठे रहते हैं तो कई बार ये होता है कि लोग भोजन करते रहते हैं और आपकी नज़र उनकी तरफ पड़ती रहती है कि भोजन कर रहा है आदमी और आपको नहीं पूछ रहा है, तो आप उसी के तरफ देखे रहते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई आपको पूछ लेता है कि भाई साहब एक आध पूड़ी चलेगी, तो आप मना भी कर देती हो। क्यों मना कर देते हैं, क्या ऐसा लगता है इसमें बेहोशी वाली पूड़ी ना हो। तो अब पूछे तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछे तो प्रॉब्लम है। अब उसके बाद सफर धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी का चलता है। अब टीटी को बोला एक आदमी ने कि भाई साहब ऐसा करना, मेरे को आप कटनी में उतार देना, और मैं बहुत तेज सोता हूँ, और जब आप मुझे नींद से उतारेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको गाली बकने लगूं, चिल्लाने लगूं, खींचने लगूं, क्योंकि मैं बचपन से मुझे कोई ने भी नींद से उठाया और मुझे इतनी जोर से चंडाली चढ़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूं। तो कब जब भी अगर स्टेशन आए तो आप मुझे उतारना, अगर मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं तो आप बुरा नहीं मानना, बस मेरा इतना निवेदन है। कहें ठीक है, मैं आपको कटनी में उतार दूंगा, आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं। अगला आदमी कटनी स्टेशन के आगे जाकर सतना में लगा चिल्लाने टीटी को, आपको मैंने बोला था कि आप कटनी में मेरे को उतार देना, मैं सोता रह गया, आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, आप लोग समझते क्या हो। और टीटी जो खड़ा था, टिकट कलेक्टर बेचारा चुपचाप खड़ा सुन रहा था, सुनते सुनते इतनी गालियां उसने सुन ली। और जब वो आदमी दूसरी ट्रेन पकड़ के कटनी की ओर चला गया तो मैंने टीसी से पूछा कि भैया उस आदमी ने यार इतनी गाली आपको बकी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बोला कि साहब मैं धोखे से नहीं उठा पाया हूँ, मैं भूल गया था, कटनी की जगह आप सतना आ गए, कोई चिंता की बात नहीं, आप चुपचाप सोचते रहे, क्या बात थी। कहने भैया मैं ये सोच रहा था कि धोखे से जिसको जबरदस्ती कटनी में उतार दिया उसका क्या होगा।
3: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मनाही की 11वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले के लाहार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपये की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 83 करोड़ रुपये से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और 20 जुलाई को फाइनल होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहनों, यह विषय केवल एक कहावत नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी इंटरनेशनल होप डे के संदर्भ में इस विषय पर विचार करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि आशा केवल एक भावना नहीं बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और पूरे विश्वास को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बहनों, यदि जीवन में उम्मीद ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। जब कठिन परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब केवल उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति आशा का साथ नहीं छोड़ता वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। एक किसान बीज बोते समय उस उम्मीद के साथ मेहनत करता है कि उसकी फसल अच्छी होगी। एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई इस आशा से करता है कि वह अपने जीवन में सफल बनेगा। एक खिलाड़ी कठिन अभ्यास इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेगा। यदि इन सबके जीवन से उम्मीद समाप्त हो जाए तो उनके प्रयास भी समाप्त हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आशा ही हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की शक्ति देती है।

बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और अटूट उम्मीद। यदि ये तीनों हमारे साथ है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। उम्मीद हमें केवल सपने देखने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि उन सपनों को साकार करने का साहस भी देती है। इसलिए बहनों, कभी निराश ना हो और दूसरों को भी निराश होने से बचाएं, क्योंकि उम्मीद की किरण कभी बुझने न देना, मुश्किलों से कभी खुद को झुकने न देना। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह की रोशनी पर विश्वास कभी टूटने न देना।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक हटाएं, कागज के थैले अपनाएं के विषय में। बहनों, यह केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारी धरती, हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश है। बहनों, आज पूरी दुनिया प्लास्टिक

दूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। प्लास्टिक का उपयोग हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। बाजार से सामान खरीदना हो, भोजन पैक कराना हो या किसी वस्तु को ले जाना हो, हर जगह प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग देखने को मिलता है। सुविधा के कारण हम इनका उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनके दुष्परिणामों पर अक्सर ध्यान नहीं देते। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होती। इससे पूरी तरह गलते नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान यह मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करती है। नालियां जाम हो जाती हैं, नदियां और समुद्र प्लास्टिक कचरे से भर जाते हैं तथा अनेक पशु पक्षी इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आज समुद्रों में रहने वाले जीवों के पेट में प्लास्टिक निकलना एक सामान्य बात बन गई है। खेतों में प्लास्टिक मिलने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। जलाने पर प्लास्टिक जहरीली गैसें छोड़ती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे श्वसन संबंधी रोग, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, अब हमारे भोजन और पीने के पानी तक पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक सुरक्षित, सरल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। यही विकल्प है कागज का थैला। कागज के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये आसानी से पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। इनके उपयोग से प्लास्टिक प्रदूषण कम हो जाते हैं। इनके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। यदि हम खरीदारी के समय अपने साथ कागज का थैला या कपड़े का थैला लेकर जाएं, तो प्लास्टिक की आवश्यकता बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। बहनों, विश्व पेपर बैग दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़े परिवर्तन की शुरुआत करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम कर दे, तो वर्ष भर में करोड़ों प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोका जा सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बहनों, केवल सरकार के नियम बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। जब तक प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। हमें स्वयं भी प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। विद्यालयों में कागज के थैले बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। दुकानदारों को प्लास्टिक के स्थान पर कागज या कपड़े के थैले देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें अपने जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में भी पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए बहनों, इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। खरीदारी के समय कागज या कपड़े का थैला साथ लेकर जाएंगे। अपने आसपास के लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सादगी में जीवन का सार है के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भाषण का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और संतोष का मार्ग दिखाती है। बहनों, सादगी का अर्थ केवल साधारण पहनना या कम संसाधनों में जीवन बिताना नहीं। सादगी का वास्तविक अर्थ है विचारों की पवित्रता, व्यवहार में विनम्रता, जीवन में ईमानदारी और आवश्यकताओं को सीमित करना। सादगी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके पहनावे, धन या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और कर्मों से होता है। बहनों, आज का युग आधुनिक और प्रतिस्पर्धा का युग है। लोग अक्सर अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी दिखावे, महंगी वस्तुओं और अनावश्यक खर्चों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि सादगी जीवन भर सम्मान और विश्वास दिलाती है। सादगी हमारे जीवन को निखारती है। एक सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति अहंकार से दूर होता है।
दूसरों का सम्मान करता है और अपने कार्यों से समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष और लालच कम होता है। वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है और परिस्थिति

परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करता है। बहनों, सादगी का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, तब प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सादगी केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। विद्यार्थी जीवन में सादगी का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी अनुशासन, समय का सदुपयोग, मेहनत और सादगी को अपनाते हैं, तो वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों के माध्यम से सादगी को अपना सकते हैं, जैसे अनावश्यक खर्च से बचना, भोजन की बर्बादी न करना, बिजली और पानी का सोच विचार कर उपयोग करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, विनम्र भाषा का प्रयोग करना और सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। यह छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। बहनों, सादगी कमजोरी नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास की पहचान है। आइए हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी, विनम्रता और संतोष को स्थान दें। हम दिखावे की संस्कृति से दूर रहकर अपने चरित्र और कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यही सादगी दिवस की सच्ची भावना होगी और यही हमारे जीवन का वास्तविक सार भी है।

बहनों, इन दिनों बाजार में दशहरी आम काफी आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, पाचन सुधरता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। यह विटामिन ए, सी और फाइबर से भरपूर होता है। इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं दशहरी आम से बनने वाले मैंगो लस्सी और मैंगो फिरनी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ताजा दही, 1 कप दशहरी आम का गूदा, स्वाद अनुसार चीनी, कुछ बर्फ के टुकड़े। सभी सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर ले। 1 गिलास में डालकर ऊपर से कटे हुए आम के टुकड़ों से और कुछ ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। तैयार है मैंगो लस्सी। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप भीगा हुआ पिसा चावल, 1 लीटर दूध, 1 कप आम का गूदा, 1/2 कप चीनी, इलायची स्वाद अनुसार और मेवे बारीक कटे हुए जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। दूध में पिसा चावल डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं, चीनी मिलाएं और ठंडा होने दें। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें आम का गूदा मिला लें। मेवे से सजाकर फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें। तैयार है टेस्टी मैंगो फिरनी। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:27 हुए हैं। समय है एक छोटे से संदेश का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे गोपाल कुमार पाशने, मदन मोहन ब्रजवासी और माधुरी शर्मा के गाए लोकगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोक संगीत का कार्यक्रम क्षमा कीजिए संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे वीरेंद्र मैथिल की गायी गजलें।

0: वीरेंद्र मैथिल की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कॉमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय

अशांति फैलने की संभावना हो पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म मोहब्बत से, इंदिवर का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आपके साथ फिल्म से आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित किया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 238,96,00,000 रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर बीएसएफ परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सहभागिता की। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के साथ 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित कर वर्षा जल के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नागरिकों से इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में 20 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर है। और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाके टिकता है। मेरी
0: ई प्रवेश अभियान में अब तक से प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब खबर मौसम की।

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ के टूटला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में आयोजित पिंक लाइसेंस ड्राइव में करीब 80 छात्राओं ने निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने

0: सुरक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित,

0: राजस्थान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी शिखा दीदी लेकर आपका मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत कुछ लाइनों से करूंगी कि छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, अच्छे संस्कार ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं, जो सीखते हैं हर दिन कुछ नया मुस्कुराकर वही बच्चे कल दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। बच्चों सुबह की ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की मीठी चहचहाट और रिमझिम बारिश की बूंदें हमें यही सिखाती है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर सुबह हमें कुछ अच्छा करने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। आप जानते हैं बच्चों, जीवन की बड़ी सफलताएं किसी एक दिन से नहीं मिलती, वो तो छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अपनी किताबों और आसपास की चीजों को सहेज कर रखना, प्रकृति से प्यार करना और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, यही छोटी छोटी आदतें बच्चों आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन कम से कम एक अच्छी आदत को हम जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आज की अच्छी आदतें ही बच्चों हमारे कल के उज्जवल भविष्य की नींव होती है। तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, तो आपसे उनका परिचय करवाऊंगी और उन्हें मिलवाऊंगी इस गीत के बाद।

0: बोलना
1: तो बच्चों, जैसा कि गाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ नए दोस्तों से, तो आइए सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, उनका नाम जानते हैं और वो हमें क्या बता रहे हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्ना दोस्त भुवेक पांडे।
1: क्या बात है भुवेक, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। बताइए भुवेक, आज आप क्या बताने वाले हैं बच्चों को?
2: आज मैं आपको एक ऐसे खास दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी धरती को हरा भरा और साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देता है। इस दिन का नाम यह विश्व पेपर बैग दिवस, जिसे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से सामान लाने के लिए जो प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल करते हैं उनका बाद में क्या होता है? प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, तो यह मिट्टी, नदियों, समुद्र और हवा तक को प्रदूषित करती है। कई बार तो गाय, कुत्ते, पक्षी और दूसरे जानवर भी प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक जा सकती है। दीदी, इसलिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को यह याद दिलाता है कि अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल दें तो धरती को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। इस अभियान को कई देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और जागरूक नागरिकों ने बढ़ावा दिया, ताकि लोग प्लास्टिक की जगह कागज और कपड़े को थैलों का उपयोग करने की आदत अपनाएं। अब सवाल यह है कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी मम्मी पापा के साथ बाजार जाएं, उन्हें कपड़े या पेपर बैग ले जाने की याद दिलाएं। स्कूल में पुराने अखबारों से सुंदर पेपर बैग बनाना सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। किसी भी कार्यक्रम या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, धरती मुस्कुराएगी जब आदत बदल जाएगी। प्लास्टिक को कहे ना, पेपर बैग को कहे हाँ। तो आइए, इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प ले कि जहाँ भी संभव होगा, प्लास्टिक की थैलियों के बजाय पेपर बैग या कपड़े के थैलों का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि आज का हमारा छोटा सा कदम आने वाले कल की बड़ी मुस्कान बन सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।
1: अरे वाह भुवेक, बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर आए हैं। और निश्चित ही ये जो पेपर बैग बनाने का आपने आइडिया दिया है ना, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मुझे आपकी ना वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी हमारे घर के बड़े कुछ सामान लेने जाए या कहीं जाए, तो हम उन्हें आग्रह करें कि वो कपड़े का या फिर जूट का थैला लेकर जाए। जब आप बच्चे इतनी समझदारी की बात करते हैं ना, तो हम बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। भुवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी के लिए। चलिए आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ एक बहुत अच्छा सा गाना।

0: बच्चों अब आपको मिलवाती हूँ माही से। तो माही बताइए आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाली हैं?
1: नमस्ते दीदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं आज आप सबको एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। मैं सब दोस्तों को बता दूँ कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया है। दीदी वो गीत मैं अब आप सबको सुनाती हूँ। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो

0: बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू दीदी।
1: कितना खूबसूरत गीत है माही ये। और बच्चा, सबसे अच्छी बात कि आपने इसे गाया भी बहुत खूबसूरती और मासूमियत से है। अच्छा माही, हम सब जानना चाहते हैं कि ये गीत आपको किसने सिखाया?
0: दीदी, ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया था। हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वहाँ हमने ये गीत गाया था।
1: अच्छा अच्छा माही, आपने इस गीत में गाया कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो माही, इस गीत से, इन शब्दों से, इन लाइनों से आपने क्या सीखा?
0: दीदी, ये गीत हमें शिक्षा देता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपना अच्छे से काम करते रहना चाहिए।
1: बहुत खूब माही, अब आपने इतना अच्छा और प्रेरणादायक गीत हमें सुनाया, हम आपके लिए क्या करें बच्चा?
0: दीदी, अब क्या आप हमें एक गीत सुनाएंगी?
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं एक बहुत अच्छा सा गाना यहाँ पर, और आपके लिए और आपके गीत के लिए हम सभी मिलकर बजाते हैं ढेर सारी तालियां।
0: ठीक है दीदी।

0: बच्चों अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नंदिनी, तो आइए स्वागत करते हैं नंदिनी का। बताइए नंदिनी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं?
1: दोस्तों मेरा नाम नंदिनी पाटिल है, मैं शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों बारिश तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बारिश एक जैसी नहीं होती। आसमान से गिरने वाली बारिश का रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। आइए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ बारिश के कुछ मज़ेदार नाम। सबसे पहले ड्रिजल के बारे में बताती हूँ। जब बहुत हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश होती है तो उसे ड्रिजल कहते हैं। दोस्तों जब थोड़ी देर के लिए अचानक तेज़ बारिश हो और फिर रुक जाए तो उसे शार कहते हैं। दोस्तों डाउनपोर, जब बहुत तेज़ और लगातार बारिश हो उसे डाउनपोर कहते हैं। अब क्लाउड बस्ट के बारे में बताती हूँ। जब बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, इसे क्लाउड बस्ट या बादल फटना भी कहते हैं। अब बताती हूँ बारिश के सबसे सुंदर मिस्ट के बारे में। यह बारिश नहीं बल्कि हवा में तैरती बहुत महीन पानी की बूंदें होती हैं, जिन्हें हम मिस्ट या हल्का कोहरा कहते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं फॉग के बारे में। जब कोहरा इतना घना हो जाए कि दूर की चीज़ें दिखाई ना दे, उसे फॉग कहते हैं और हम यह अक्सर सुबह सुबह देखते हैं। अब बताती हूँ स्लीट के बारे में। जब बारिश की बूंदों के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे कण भी गिरे तो वह स्लिट होता है। अब स्नोफॉल के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों जब बारिश की जगह बर्फ गिरे तो वो होती है बर्फबारी यानी स्नोफॉल। अब सबसे सुंदर बारिश, जिसे हम सनशार कहते हैं। जब धूप भी निकली हो और उसी समय बारिश भी हो रही हो तो वो होता है सनशार। और हम रेनबो भी सनशार में ही देखते हैं। इसके अलावा एक होती है मॉनसून रेन, बरसात के मौसम में होने वाली नियमित वर्षा को मॉनसून रेन कहते हैं। तो दोस्तों अब अगर कोई पूछे कि बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इट्स रेनिंग ही नहीं बल्कि यह भी बता सकते हैं कि ड्रिजल, डाउनपोर, क्लाउड बस्ट या सनशार हो रही है। बारिश के भी कितने रंग और कितने नाम होते हैं। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है दोस्तों।
0: अरे वाह नंदिनी, आपने तो इस मौसम के हिसाब से जितनी भी बारिशें होती हैं उन सब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी कलेक्ट की। और वाकई बच्चों हमेशा इट्स रेनिंग बोलना ठीक नहीं है, तो नंदिनी ने जिन शब्दों को बताया है हमें उन शब्दों को ध्यान रखना है, उन्हें सीखना है और उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करना है। तो नंदिनी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: थोड़ी बारिश हो गई तो आसमां धुल गया,

तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे नंदिनी भोविक और माही। तो बच्चों आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वीकार कीजिए शिखा दीदी का टाटा बाय बाय और जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया। डॉक्टर यादव ने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले सेना के जाबाज जवानों एवं अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है। भोपाल में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से एक विशेष साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 सीए स्टूडेंट्स और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण 7:21 पर होगा, जिसमें 7:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। रात 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति होगा। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 9:30 आप सुन सकेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में कुमार मर्दुर का गायन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

टाइम मैच कर लें, कंसोली घड़ी में टाइम हुआ है 4:27।

0: आकाशवाणी इंदौर पर प्रसारित होता है। एनसीईआरटी प्रायोजित
1: सिंधिया जी सरहान, यह आकाश डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी

ठीक है डन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं मार्गेशा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: दोस्तों, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, कहीं रिमझिम फुहारे हैं, कहीं तेज बारिश और हर तरफ मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई है। उम्मीद है कि आप भी सुहाने मौसम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे।
1: आज के कार्यक्रम में हम बारिश के इसी खूबसूरत मौसम पर आपसे कुछ दिलचस्प बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन से जुड़ी दो खास बातें आपसे साझा करना चाहेंगे।
0: सबसे पहले तो ये कि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा एक ऐसा छोटा शब्द, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। यही आशा हमें कठिन समय में आगे बढ़ने का हौसला देती है, नई शुरुआत का विश्वास देती है और ये याद दिलाती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।
1: तो आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, हम खुद भी आशावादी रहेंगे और अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की एक नई किरण जगाने की कोशिश करेंगे।
0: और अब समय है हमारे कार्यक्रम की उस कड़ी की ओर जाने का, जहां हम आपसे पूछते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है
1: कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है।
0: और आज का दूसरा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था।
1: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों सवालों के सही उत्तर ढूंढने में कामयाब होंगे। और अब सुन लेते हैं एक गीत, और गीत के उस पार होगा आज का खास सेगमेंट युवा तरंग, जिसमें हम बात करेंगे युवाओं से और सुनेंगे उनके पसंद के गीत।

0: फिर अब हमसे एक और साथी जुड़ चुकी है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम नायरा है।
0: अच्छा नायरा, आप क्या करते हो?
1: मैं इंदौर में आईटी सेक्टर में जॉब करती हूँ।
0: ओह, तो आप इंदौर से ही हो?
1: हाँ जी, मैं इंदौर में ही रिसाइड करती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने जैसे कहा कि आप आईटी सेक्टर से जॉब करती हो, तो आपका फिर टाइमिंग क्या रहता है?
1: मेरा टाइमिंग अप्रॉक्स 9:30 मैं निकलती हूँ अपने घर से, एंड 6:30 पे मेरा जॉब ओवर हो जाता है और मैं 7 बजे तक घर आ जाती हूँ।
0: वैसे मैंने सुना तो है कि आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है, काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, और कई बार तो ये जो 9 to 5 है, ये 9 to 5 ना रहके 9 to 7, 9 to 8 तक हो जाता है। तो आपके साथ ऐसी कभी सिचुएशंस हुई हैं?
1: हाँ, बहुत बार हो चुकी है। जनरली देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। अगर प्रोजेक्ट की अर्जेंसी होती है और लाइक अगर टारगेट पूरा नहीं होता है, तो हमें ऑब्वियसली पूरे ऑफिस को नहीं, बट जो जो लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है बेसिकली, उनको एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम करना पड़ता है, बट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है।
0: ये भी काफी अच्छा आइडिया। वैसे आपने कभी वर्क फ्रॉम होम भी किया? क्योंकि आजकल इसका काफी ज्यादा चलन रहा है, और खासकर जब कोविड हुआ था, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद तो पूरी दुनिया भर में ही शायद वर्क फ्रॉम होम का काफी कल्चर बढ़ गया, और अभी भी कई सारे ऑफिस में हाइब्रिड मोड में काम किया जाता है कि कुछ दिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ दिन ऑफिस करना है। तो क्या आपने वर्क फ्रॉम होम कभी किया है?
1: हाँ, बहुत बार। जनरली जब ऐसा होता है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा आपकी बच गई है, या इवन अगर वेदर ठीक नहीं है, या आप अपनी मर्जी से भी वर्क फ्रॉम होम आप ले सकते हो। तो लास्ट टाइम मेरे ब्रदर की शादी थी 2 मंथ्स पहले, तो मैंने 15 दिन का वर्क फ्रॉम होम किया था, जिससे कि मैं दोनों चीज़ें आराम से मैनेज कर पाई और मेरी छुट्टियाँ भी नहीं हुई।
0: ये काफी अच्छा आइडिया वैसे, कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको बहुत लंबी छुट्टियां लेनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हम वर्क फ्रॉम होम कर लें। लेकिन जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पसंद है, किसी को वर्क फ्रॉम होम करना पसंद है, तो अगर हम आपको दिस या दैट का ऑप्शन दे, तो आप क्या चूज करेंगी?
1: देखिए, मैं तो वर्क फ्रॉम होम चूज करूंगी।
0: तो चलिए अब बात करते हैं बारिश की। तो बारिश आपको पसंद है या नहीं, पहले तो ये बताइए।
1: हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो बारिश का अगर हम थोड़ा सा ऐसा क्विज जैसा रखें कि बारिश में आपको जब बहुत तेज बारिश होती है वो समय अच्छा लगता है, कि बारिश के पहले जब एकदम बहुत तेज हवाएं चलने लगती है वो वाला समय ज्यादा पसंद होता है?
1: मुझे बेसिकली जो पहले थोड़ा सा होता है, जब थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही होती है, एकदम आप आसमान की तरफ देखते हैं और एकदम ऐसी नारंगी किरणें होती है, आसमान बहुत खूबसूरत होता है, पेड़ एकदम हरे भरे हिल रहे होते हैं हवा से, एकदम आपको ऐसा लगता है जैसे कि धरती आपसे बात कर रही हो, तो वो टाइम मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट है।
0: और इसके साथ बारिश में आप घर पे रहना, बारिश को एंजॉय करना पसंद करती हो, या फिर आपको घूमने जाना ज्यादा अच्छा लगता है बारिश के मौसम में?
1: डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मेरे कॉलेज के दिनों में मैं जब भोपाल में रहा करती थी, तो हम अभी की तरह नहीं कि बारिश आ गई तो बस घर में बैठ के हमने चाय पकौड़े बना लिए बैठ गए, नहीं, हम तब बच्चे थे तो हम घूमने निकल जाया करते थे, डैम्स घूमते थे, रोडों पे घूमते थे, बहुत मजा आता था। हमारे पास सबके पास गाड़ियाँ थी, तो हमने बहुत मजे किए, तो मुझे दोनों चीजें बहुत पसंद है, घूमना भी, बारिश में भीगे भी बहुत है। और अब जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जा रही है, तो हमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है, अब हम बस घर में बैठकर लाइक खिड़कियों से और बरामदे से बारिश को देखते हैं।
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, वैसे ही चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, उसे एक्सपीरियंस करने का तरीका बदलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे बारिश की, तो बारिश में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हो आप?
1: देखिए, मेरा ऐसा है, जनरली लोग पकौड़े या चाय या ऐसा कुछ प्रेफर करते हैं, बट मुझे ऐसा गर्मा गर्म बाउल ऑफ सूप या फिर नूडल्स ऐसे या मैगी मिल जाए, तो मुझे एकदम बारिश मेरी बढ़िया हो जाती है।
0: हाँ, क्या मेरे मुंह में पानी आ गया आपने जैसे ऐसी बात की। और अच्छा है, कोई बताओ ऐसे बचपन से लेके अभी तक कोई बहुत स्पेशल बारिश से जुड़ी हुई कोई मेमोरी आपकी?
1: बारिश से जुड़ी हुई मेरी पिछले साल की मेमोरी है। पिछले साल हम गोवा गए हुए थे ऐसे ही फ्रेंड्स ट्रिप पे, और तब बारिश का मौसम था, तो जनरली गोवा जिन लोगों की मेमोरीज होगी ऐसी होगी कि

0: कि बहुत लोग होते हैं, हैपनिंग प्लेस होती है, बीचेस पर भी बहुत लोग होते हैं, बट जब हम जुलाई में गोवा गए तो वहां पे सरप्राइजिंगली कोई भी नहीं था, पूरे गोवा में कोई नहीं था और पूरा गोवा खाली था। तो हम जहाँ भी जैसे ही गाड़ी लेके निकलते थे बारिश शुरू हो जाती थी, बट किसी को भी कोई कंप्लेन नहीं थी क्योंकि हमने इतना एंजॉय किया है बारिश में। 3 दिन हम इतना घूमे हैं, हम बारिश में भी बीच पे गए हैं और बहुत मजे किए हमने, तो वो बारिश मैं कभी भूल ही नहीं सकती। इतना खूबसूरत हो जाता है गोवा, आप भी एक बार बारिश में जरूर जाइए।
1: मतलब आप सभी को एक न एक बार बारिश के सीजन में बीच वाले एरिया पे जरूर जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का होता है।
0: जी जी बिल्कुल। और बारिश तो मेरा फेवरेट सीजन है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी लोगों को तकलीफ भी होती है, मैं उनसे बहुत हमदर्द हूँ, पर बारिश चाहे जैसी भी हो हमारे धरती के लिए, हमारे लिए, जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बारिश का सीजन नहीं आएगा तो हमारी धरती प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो हमें हर सीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वो गर्मी हो, भले ही वो सर्दी हो, भले ही वो बारिश हो, सबका अपना एक अलग मजा होता है। अपना मजा ढूंढिए, अपना एक स्पेशल कॉर्नर ढूंढिए और कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो उस सीजन को आपके लिए स्पेशल बनाती हो।
1: अरे वाह क्या बात है, आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी बात की यहाँ पे कि कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढिए कि जो आपके सीजन को, जो आपके मोमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो नायरा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने बातें भी बहुत अच्छी की, और जो आपके बारिश के एक्सपीरियंस थे वो भी बहुत ही कमाल के थे, बिल्कुल आपकी तरह। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो बारिश का सीजन है ये आपका ऐसे ही बीते, एकदम खुशनुमा बीते, और आप अपनी जॉब में भी काफी तरक्की करें। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आज आप आकाशवाणी की ओर से कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: तो क्योंकि हमने इतनी प्यारी प्यारी बारिश की बातें करी है तो मैं अपना फेवरेट गाना सुनना चाहूंगी जो कि है बारिश हाफ गर्लफ्रेंड से।
1: अरे वाह बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है, तो आइए सुनते हैं नायरा की पसंद का ये गीत।

0: तो चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं हमारी अगली मेहमान के साथ। नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं और आप क्या करती हैं? हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए।
1: मेरा नाम गरिमा है, मैं इंदौर से हूँ और मैं गूगल एड्स में काम करती हूँ।
0: तो गरिमा, अभी मौसम बरसात का चालू हो चुका है और आप भी मुझे यहाँ खड़ी हुई मिल गई, तो मुझे बताइए कि बरसात के मौसम के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है?
1: बरसात के मौसम में तो गरम गरम भुट्टे, हल्की हल्की फुहार, और मौसम ही एक ऐसा प्यारा है कि इसके बारे में क्या कहें। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा, इट्स जस्ट परफेक्ट।
0: तो मतलब थोड़ा सा अगर मैं आपके बचपन के बारे में आपसे पूछूं और पूछूं कि क्या आपने कभी कागज की नाव बनाई हो, और अगर हाँ, अगर बनाई हो तो उसके बारे में, उस याद के बारे में थोड़ा सा कुछ मुझे बताइए।
1: आपने जैसे ही बचपन कहा, मुझे सबसे पहली मेमोरी यही आई कि हम कागज की नाव बनाया करते थे और वो पिघल जाती थी। हाँ। हमें बड़े मजे आते थे उसमें, पानी में छप छप करना, झूठ मूठ की होली खेलना, बारिश में भीगने की जिद करना, फिर मम्मी से डांट खाना।
0: ये तो है। मुझे ये बताओ कि बारिश का आपके लिए क्या मतलब है? मतलब सुकून, रोमांस, छुट्टी या ट्रैफिक जैम, कीचड़, कुछ भी, जैसे आपके कुछ भी पहली फीलिंग जो आपके दिमाग में आती हो बारिश का नाम सुनते।
1: बारिश वैसे हर चीज में एक ओवरऑल फील देता है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी, छांव का मौसम रहेगा, तो एकदम सूदिंग मौसम लगता है। लेकिन वहीं जब गड्ढे आ जाए और ऊपर से पानी गिर रहा हो, हाँ। तब वही चिड़चिड़ में भी चेंज हो जाता है।
0: ये तो
1: और
0: है।
1: अगर पार्टनर साथ हो तो रोमांटिक भी हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन।
0: है, बिल्कुल सही। तो गरिमा, एक छोटा सा रैपिड फायर कर ले तो चलेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपके दिमाग में पहला जो ख्याल आए आप मुझे वो बताइएगा। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बारिश में चाय या कॉफी?
1: चाय।
0: चाय। गरम गरम पकौड़े या ताजा सिका हुआ भुट्टा?
1: ताजा सिका हुआ भुट्टा।
0: छाता या रेनकोट?
1: रेनकोट।
0: हल्की फुहार या एकदम तेज जोरदार बारिश?
1: हल्की फुहार।
0: बारिश में ड्राइव या घर पे आराम?
1: ड्राइव।
0: ड्राइव तो है। तो मुझे एक अच्छी सी आप याद बता दीजिए अपनी, कोई भी बारिश से रिलेटेड, जैसे बारिश का नाम लेते आपको लगे कि ये मेरी सबसे अच्छी याद रही है बारिश के साथ में, तो वो क्या रहेगी?
1: एक बार मैं और मेरे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव पे गए थे बाइक से, और बीच में हल्के हल्के फुहार आ रही थी, पास में ही भुट्टे सिक रहे थे शिप्रा पुल पे। हमने बढ़िया भुट्टे खरीदे, स्वीट कॉर्न थे अमेरिकन, वहीं खाए, बढ़िया नमक नींबू लगा के। एक्चुअली मैं फूडी बहुत हूँ, तो मुझे
0: बारिश आपकी बातों से मुझे समझ में तो आ रहा है, तो ये आपकी सबसे अच्छी याद रही होगी ऐसा। गरिमा, अब मुझे आप ये बताओ, थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन अगर हम करें बारिश को लेकर, तो मुझे लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बारिश हमें जिंदगी की रफ्तार से थोड़ा रुककर, हम जिस पल में है, मतलब इन द मोमेंट जैसे हम कहते हैं, वो हमें करना सिखाती है?
1: हाँ बेशक, क्यों नहीं, क्योंकि बारिश में कई चीजें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ बैठ के देखना बारिश भी कई बार बड़ा सुकून देता है। और जो बारिश में हरियाली खिल के आती है वो अंदर की शांति देती है, उसे देखकर, उस ग्रीनरी को देखकर एक अंदर ठहराव आता है। तो हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से।
0: बहुत अच्छी बात है। तो गरिमा, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो बारिश का मौसम वैसे ही रोमांटिक सा होता है, एक शायराना अंदाज तो आ ही जाता है बारिश के मौसम में। तुम अगर कुछ दो लाइंस अगर तुम बोलना चाहो बारिश के बारे में तो वो क्या होंगे?
1: अभी

0: रिसेंटली मैंने एक काफी प्यारा शेर पढ़ा था बारिश का. वो यूं था कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था. और एक और बहुत ही प्यारा था जो कुछ यूं था कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है.
1: हाय हाय, तो बहुत ही मजा आया. तो एक आखिरी सवाल मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि युवाणी की तरफ से आज आप बारिश से रिलेटेड कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे 90s के गाने बहुत पसंद है, तो आप प्लीज मेरे लिए वो गाना बता दीजिए.
1: बहुत ही बेहतरीन चॉइस है. तो बिल्कुल हम ये गाना आपके लिए भजवाएंगे. और मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया. और सुनते ही रहिएगा युवाणी.
0: बिल्कुल.

0: चलिए अब बारी है हमारे एक और साथी से जुड़ने की। हेलो,
1: हेलो,
0: आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम समर्थ है।
0: अच्छा समर्थ, आप क्या करते हो?
1: मैं अभी बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, आप अभी बीबीए कर रहे हो, क्या बात है। मतलब आप अभी स्टूडेंट हो?
1: जी मैं स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा, तो जैसे कि अभी हम हमारे एक और साथी से बात कर रहे थे और हम बारिश की काफी सारी बातें आज कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी बड़ा ही सुहाना हो रखा है। तो आपको बारिश पसंद है?
1: जी मुझे बहुत पसंद है बारिश।
0: अच्छा, तो बारिश में सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: बारिश में जो मिट्टी की खुशबू आती है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है।
0: हाँ, ये मुझे कई लोगों से जानने को मिला है कि उन्हें मिट्टी की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। एक नॉस्टैल्जिया होता है, ऐसा लगता है कि बचपन की कुछ यादें हैं, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। तो बारिश में ऐसा, अगर हम दिस और दैट का एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, तो बारिश में घर पे रहना पसंद है या बाहर जाना पसंद है?
1: बारिश में बाहर जाना पसंद है।
0: घूमने जाना मतलब ऐसे राइड्स वगैरह पे, तो आप गए हो कभी बाइक राइड्स या रोड ट्रिप पर बारिश के मौसम में?
1: जी मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड्स पे गया हूँ और जो जनरली जाते हैं थोड़ा घूमने वगैरह ट्रिप्स पे, वहाँ पे भी गया हूँ।

0: आपको कि बाहर जाना ही ज्यादा पसंद है?
1: जी जी।
0: तो जैसे हम बाहर जाते हैं रोड ट्रिप्स पे बारिश के मौसम में, तो क्या पीना पसंद है, चाय या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक?
1: चाय।
0: हाँ, जैसे मैं, मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद होता है या आइसक्रीम खाना पसंद होता है बारिश के मौसम में, तो कभी ट्राई किया है आपने?
1: ट्राई किया, लेकिन चाय तो चाय
0: ये तो है कि चाय की बात ही कुछ और है। अच्छा, और इसके अलावा पकोड़े या भुना हुआ भुट्टा?
1: भुट्टा।
0: तो बारिश के मौसम में आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे आप दूसरे मौसम में भी गए थे, लेकिन आप जब बारिश के सीजन में वहाँ गए तो उसकी ब्यूटी और बढ़ गई और आपको वहाँ जाके और भी अच्छा लगा?
1: जी, मुझे नेचुरल साइट्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो मैं जैसे बामनिया कुंड और ऐसे वाटरफॉल्स वगैरह में गया हूँ। वो मजा तो बारिश के मौसम में ही आता है वहाँ पे।
0: और जैसे आपने कहा कि आप बाइक राइड्स पे अपने दोस्तों के साथ गए हो, तो कोई खास मेमोरी बारिश से जुड़ी हुई रही हो उस ट्रिप पे?
1: जी, एक बहुत कोर मेमोरी है बारिश की उस ट्रिप से, कि हम एक वाटरफॉल जा रहे थे, हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और हम यहाँ से जब निकले थे तब बिल्कुल बारिश जैसा मौसम नहीं था और ऐसा नॉर्मल लग रहा था आधे रास्ते, पर जैसे ही बारिश होना चालू हुई तब मौसम इतना प्लेजेंट हो गया आसपास का, सब भीगते भीगते गए वहाँ पे, और जो वहाँ पे मजे करे वो एक अलग ही मेमोरी है।
0: मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बारिश होने वाली है और बारिश हो गई तो और मजा बढ़ गया।
1: जी जी।
0: तो जैसा आपने कहा आप एक स्टूडेंट हो, तो कई सारे इस युवा अवस्था में ही बारिश को ना बहुत अलग अलग नजरियों से देखते हैं। जैसे कई लोगों के लिए बारिश बहुत हैप्पी होती है, बहुत हैपनिंग होती है, किसी के लिए बहुत सैड भी होती है। कई लोगों ने, कई पोएट्स ने, कई लिरिसिस्ट ने इसके ऊपर गाने भी लिखे हैं, तो आप कैसे इमोशन फील करते हो बारिश के मौसम में?
1: जी, मुझे बारिश का मौसम बहुत रोमांटिक लगता है और बहुत हैपनिंग लगता है, कि आसपास हमारे बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे जो बारिश की आवाज जब आती है वो आवाज, और मेंढकों की आवाज आती है, तो वो बड़ा हैपनिंग सा लगता है। बाहर भी मौसम भी ऐसा हो रहा होता है पूरा।
0: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बारिश का मौसम होता तो रोमांटिक है, और ये दुनिया भर में जितनी भी मूवीज बनी है, जितनी भी कविताएं लिखी गई है, स्टोरीज लिखी गई है, उसमें बारिश को काफी ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम बचपन से ही ये चीजें देखते आए हैं, सुनते हुए आए हैं और इन्हीं चीजों के बीच बड़े हुए हैं, तो हम सबको बारिश रोमांटिक तो लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके हिसाब से बारिश को एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है, या ऐसा कुछ जो आप करते हैं जिससे आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं, और जो बारिश की जो बुरी चीजें होती हैं जैसे कीचड़ होना, दिक्कतें आना, उसको भुलाकर एकदम जो प्रॉपर तरीके से आप बारिश को कैसे एंजॉय करना पसंद करते हो?
1: मेरा जो सबसे, मुझे जो पसंद है बारिश को जैसे एंजॉय करना, वो मेरी छत पे बैठ के एक गर्म चाय और मैगी साथ में गाने हेडफोन्स में चलते रहे, तो उसका मजा अलग ही आता है।
0: अच्छा, आपको ये मतलब अकेले बैठकर एंजॉय करना पसंद है। और आजकल मैगी का बड़ा ही प्रचलन चलने लग गया बारिश के मौसम में। हमने एक और साथी से बात की तो उन्होंने भी सेम चीज बोली कि मुझे तो घर पे बैठ के मैगी खाना पसंद है या सूप पीना पसंद है। तो अचानक से मैगी का प्रचलन पता नहीं क्यों आ गया, बट शायद बचपन से ही हम खाते आ रहे हैं तो शायद पसंद आने लग गया।
1: मैगी या गर्म सूप या जो भी थोड़ा गर्म चीज जो रहती है, जो खाने में और प्लेजेंट लगती है उस मौसम,
0: मतलब कि थोड़ा सा माहौल थोड़ा वार्म हो जाए, थोड़ा कोजी कोजी हमको फील होने लग गया। अरे वाह, क्या बात है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें समर्थ। धन्यवाद समर्थ हमसे बात करने के लिए। आइए सुनते हैं समर्थ की पसंद का ये गीत।

0: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
1: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
3: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए, नए जमाने
1: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: औरों को भी सिखाओ।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं हमारी अगली मेहमान के साथ। नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
1: क्या नाम है आपका और आप क्या करती हैं?
2: मेरा नाम याशिका है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट।
1: तो याशिका, बारिश का मौसम जैसे कि तुम जानती हो कि दस्तक दे चुका है, कहीं रिमझिम फुहारे हैं, कहीं तेज बारिश शुरू हो चुकी है और इस मौसम ने हर किसी का मूड बदल दिया है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना युवा तरंग कार्यक्रम में आपसे इसी खूबसूरत मौसम पर थोड़ी सी दिलचस्प बातचीत करें, तो आपको चलेगा?
2: जी जी बिल्कुल।
1: सबसे पहले याशिका, मुझे ये बताओ कि बारिश की पहली बूंद गिरते ही तुम्हारे चेहरे पे सबसे पहले मुस्कान आती है या सबसे पहले छाते की याद आती है?
2: तो अगर मैं घर में हूँ और ये एकदम चिंचलाती गर्मी के बाद अगर बारिश आई है तो मुस्कान आती है।
1: ओके।
2: और अगर मैं कहीं बाहर हूँ और कॉलेज से घर आ रही हूँ तो छाते की याद।
1: वेरी प्रैक्टिकल आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बारिश अगर आपकी पर्सनैलिटी जैसी होती, यानी आपके व्यक्तित्व की जैसी होती, तो वो कैसी होती? क्या वो एक शांत सी रिमझिम बारिश की तरह होती या फिर जोरदार तेज बारिश जो होती है वो होती, या फिर जैसे कभी कभी बारिश हमें सरप्राइज दे देती है तो वैसे सरप्राइज एलिमेंट वाली होती?
2: मेरे हिसाब से मैं सरप्राइज एलिमेंट वाली बारिश बनना पसंद करती हूँ, क्योंकि धीमी बारिश अच्छी लगती है पर वो काफी देर बाद बोरिंग हो जाती है, और जो तेज होती है उससे नुकसान काफी होता है। जो सरप्राइज वाली होती है वो बोरिंग भी नहीं होती और उससे एकदम नुकसान भी नहीं होता।
1: अगेन वेरी प्रैक्टिकल आंसर। ओके, तो मुझे ये बताओ कि बारिश का नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में सबसे पहले कौन सी याद आती है? कोई बचपन की याद हो, कॉलेज की याद हो, या अपने दोस्तों के साथ की कोई अच्छी याद हो जो तुम हमारे श्रोताओं को बताना चाहो?
2: मेरी सबसे पसंदीदा याद मैं ये कहूंगी ये थी कि अभी मैं अपनी कॉलेज के ब्रेक में घर आई हुई थी। हम ऐसे ही दोस्तों के साथ निकले थे और बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई, और जनरली लोग बारिश में रुक जाते हैं पर हम उस बारिश में पानी पूरी खा के आए थे और उसके बाद भी हम बारिश में भीगे थे। तो वो मेरी सबसे पसंदीदा याद है।
1: ओह नाइस। तो मुझे बताओ कि बारिश में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? गीले जूते, ट्रैफिक जैम, बिजली गुल हो जाना, या फिर गीले चिपचिपे कपड़े?
2: गीले जूते।
1: क्यों?
2: उन्हें सूखने में बहुत समय लगता है, और फिर अगर आपको, और क्योंकि वो एक बार गीले हो गए तो उनको काफी ज्यादा समय लगता है। और फिर
1: ये तो बिल्कुल सच है। अगर बारिश के दिन तुम्हें कोई दो चीजें चुननी हो इन चीजों में से जो मैं तुम्हें बताऊंगी, तो तुम क्या चुनोगी? ठीक है, चाय, कॉफी, गरम गरम सिका हुआ भुट्टा, या ठेले पे मिलने वाले भजिए और एक अच्छी किताब?
2: भजिए और एक अच्छी किताब।
1: अगर बारिश सिर्फ 2 घंटे के लिए तुम्हारे हिसाब से होने वाली हो तो उन 2 घंटों में तुम क्या करोगी?
2: तो पहले तो अगर मुझे 2 घंटे शुरुआत में बढ़िया, जैसे मैंने आपको पिछले आंसर में भी बताया, पकौड़े और एक बढ़िया किताब या कोई बहुत अच्छी मूवी या अच्छे गानों के साथ मैं 1 घंटा व्यतीत करूंगी, और फिर धीरे से ठंडी बढ़ेगी, बिकॉज बारिश अगर कंटिन्यूस 2 घंटे की होती है धीरे धीरे ठंडी बढ़ती है। तो एक बढ़िया सी चादर और लोहर ओढ़ कर मैं बिस्तर में सोना पसंद करूंगी।
1: मुझे लगता है ये हर किसी का कॉमन आंसर होगा कि बहुत तेज बारिश बाहर होती रहे और हम अपने घरों में आराम करें। ये तो बिल्कुल सही है। तो याशिका, मुझे ये बताओ कि जैसे कि आजकल हम सभी अपनी भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं, जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है, क्या तुम्हें लगता है कि बारिश एक ऐसा मौसम है जो लोगों को अपने आप के लिए कुछ पल निकालने का मौका देता है?
2: हाँ, मैं बिल्कुल इससे अग्री करती हूँ। उसके लिए मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो जैसे हम जब कॉलेज में होते हैं तो हम या तो हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, हम कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ भी शांत हमें नहीं मिलती। बट जैसे सपोज हम एक कॉलेज से घर ही आ रहे और एकदम बारिश शुरू हो जाए, तब कहीं ब्रेक लेना पड़ता है, और तब अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं निकाल सकते क्योंकि बारिश में वो गीला हो जाएगा। आप क्योंकि सब भीगे भीग रहे, तो आपको 1 मिनट रुक के आप अपने आजू बाजू देखते हो, आपको वो बारिश की सौंधी खुशबू, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप किसी टपरी के पास हो तो बढ़िया गर्मा गर्म चाय, तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाते हो, बिकॉज बारिश में जनरली आपको रुकना ही सिखाती है। भीगो या कहीं बाहर निकल रहे हो तो आपको घर में रुकना पड़ेगा। तो इसी
1: नाइस, मतलब काफी अच्छा सधा हुआ आंसर था। मुझे बात करके भी आपसे बहुत अच्छा लगा याशिका, और तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये भी लगा कि बारिश सिर्फ आसमान से गिरने वाली बूंदें नहीं बल्कि यादों, मुस्कानों और एहसास का भी एक खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बारिश और ये वाला मौसम आपके भी जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनते रहिए युवाणी।

0: तो दोस्तों ये था हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की और जाना कि आशा ही वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: इसी के साथ ही मानसून के इस सुहाने मौसम पर हमने हमारे युवा श्रोताओं से भी ढेर सारी दिलचस्प बातें की। उनकी बारिश से जुड़ी हुई यादें, किस्से और उनके पसंद के गीत सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा।
0: अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करने से पहले आइए एक बार उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सही उत्तर जान लेते हैं जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे।
1: तो दोस्तों आज की कड़ी का पहला प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, और इसका सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, और इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी।
1: उम्मीद है आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। अगर नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर लेकर जरूर आता है।
0: इसी उम्मीद, इसी मुस्कान और इसी सकारात्मक सोच के साथ अब दीजिए जयती
1: और मार्गिशा को इजाजत।
0: आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस मॉनसून का आनंद लेते रहें।
1: फिर मिलेंगे युववाणी के अगले अंक में नई ऊर्जा, नई जानकारी और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुना युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 12 जुलाई और आज का ये जो दिन है, ये जो तारीख है आज की, इस दिन सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार का देहावसान हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने इस फानी दुनिया को विदा किया था। श्रोताओं, आज का जो फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम है, हम अपने श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें समर्पित करते हैं और आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको

अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए गीत सुनवाते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल एक मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। लीजिए सुनिए।

संगीत में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है सूरज।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए हिंदी फिल्मी गाने। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार का पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली था। उनका जन्म 20 जुलाई 1927 को उस समय के ब्रिटिश भारत के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, उस स्थान पर हुआ था। लेकिन भारत विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया, और शुरुआती दिनों में फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार ने अभिनेता बनने के बजाय निर्देशक H.S. रावल के सहायक के रूप में काम किया था। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

अभिनेता राजेंद्र कुमार की शुरुआती फिल्मों में जोगन और मदर इंडिया जैसी फिल्में शामिल रहीं। सन 1957 की मदर इंडिया जो फिल्म थी, उस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, 60 का जो दशक था वो राजेंद्र कुमार के नाम रहा। उनकी एक के बाद एक कई फिल्में आई और सभी फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बनाती थीं। इसी वजह से उन्हें एक नया नाम मिला और वो नाम था जुबली कुमार। जी हाँ, राजेंद्र कुमार को हम इसीलिए जुबली कुमार के नाम से जानते हैं क्योंकि उनकी फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली हुआ करती थीं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस समय आप सुन रहे हैं आई मिलन की बेला फिल्म का गीत। जोड़ी एक बार फिर से वही है, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

स्वतः राजेंद्र कुमार ने अनेक यादगार फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कुछ उनकी प्रमुख फिल्में हैं जैसे धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई, कानून, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज, झुक गया आसमान, साथी, गीत, गंवार और भी बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहीं, जो लोगों द्वारा बहुत देखी गईं और सराही गईं। इन फिल्मों के गीत हम आपको आज सभी को ये सुनवाएंगे। और ये जो गाने हैं श्रोताओं, ये आज भी आपके जब पत्र हमारे पास आते हैं तो आपके पत्रों में इन फिल्मों की गीतों की फरमाइश हमसे की जाती है और इन गीतों को सुनना और सुनवाना हमें भी बेहद पसंद है। आइए आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है आरजू फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और मैं हूं आपकी रेडियो साथी वंदना तिवारी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए गीत। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी पहचान थी उनका सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला अभिनय। वे जोरदार संवादों से नहीं बल्कि अपनी आँखों से और अपनी भावनाओं से अभिनय करते थे और सिनेमा जगत में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेत्री साधना, सायरा बानो, वैजयंती माला, माला सिन्हा और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई। उन पर फिल्माए गए गीतों में से मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ थी वो जैसे उनकी अपनी पहचान बन गई थी। और आज के इस कार्यक्रम में हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो भी अधिकांश मोहम्मद रफ़ी के द्वारा ही गाए हुए हैं। आगे भी आप उन्हीं के गाए हुए गीत सुनेंगे जो फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार पर केंद्रित हैं। इसी क्रम में लीजिए सुनिए घराना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: चैलेंजेस, राइट्स एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स, इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।
1: श्रोताओं, एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजेंद्र कुमार सिर्फ फिल्म अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि वो एक निर्माता भी थे और उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी से लॉन्च किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था और खूब देखा गया, खूब सराहा गया। 1970 में भारत सरकार ने राजेंद्र कुमार को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। ये जो सम्मान था, ये उनके फिल्म जगत में शानदार योगदान के लिए उनकी पहचान के रूप में था। लीजिए सुनिए आप आए बाहर आए फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज़ में।

श्रोताओ, समय के साथ नए कलाकार आए, नया दौर आया, लेकिन राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई। आज भी रेडियो पर हम उनके गीत जब बजाते हैं और जब आप उन्हें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान उस गीत की तरफ चला जाता है और आप भी ध्यानमग्न होकर उस गीतों को सुनने लगते हैं। राजेंद्र कुमार पर जो गीत फिल्माए गए थे, उन गीतों की अगर हम बात करें तो इतने सुमधुर गीत उनके हिस्से में आए, इतना प्यारा संगीत, इतने अच्छे बोल कि बरबस ही हमारा ध्यान उन गीतों की तरफ खींचा चला जाता है।

ससुराल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था। शंकर जयकिशन का संगीत था। और जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं की, आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए हिंदी फिल्में गीत। तो इसी क्रम में हम आपको सुनवाते हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ फिर से मोहम्मद रफ़ी की, बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

दोस्तों, राजेंद्र कुमार केवल एक फिल्म अभिनेता नहीं थे, बल्कि अपने दौर की पहचान थे। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था, उनके अभिनय में सच्चाई थी और उनके गीतों में ऐसा जादू था जो आज भी हमारे दिल को छू लेता है। शायद यही वजह है कि उन्हें याद करते ही हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर हमारी आंखों के सामने जीवित हो उठता है।

श्रोताओं, आज 12 जुलाई का दिन है और 12 जुलाई 1999 को इस हरदिल अजीज फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन हुआ था और आज का ये जो कार्यक्रम है हमने अपनी श्रद्धा सुमन के स्वरूप उन्हें समर्पित किया। चलते चलते उन्हीं पर फिल्माया एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।

कितनी अच्छी और सच्ची बात इस गीत में है कि अगर हमारे वश में होता तो हम पुराने दिनों को, बीते हुए समय को और उन लोगों को जो इस दुनिया से चले गए, जो हमारे अपने थे, हम उन्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने देते, उन्हें सदा अपने साथ रखते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने काम के माध्यम से हमारे दिलों में, हमारे जहन में जिंदा रहते हैं, और फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार उन्हीं में से एक हैं। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ आज मैं आपकी रेडियो साथी इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। वंदना तिवारी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं फतेह सिंह परमार और साथी।

निमाड़ी लोकगीत आप सुन रहे हैं फतेह सिंह परमार की आवाज में। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में एक और निमाड़ी लोकगीत सुनिए।

0: इसी के साथ लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे फतेह सिंह परमार के गाए निमाड़ी लोकगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओं, शाम के 7 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय

0: के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर स्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, कार्यक्रम की जानकारी देने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक संदेश।
3: July 12 दिन रविवार को रात्रि 8:30 पर सुनिए द रोल ऑफ जेंडर इन पुलिसिंग चैलेंजेस राइट्स एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स। इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

आप इस कार्यक्रम में सुनेंगी, साथ ही आप सुन सकेंगे लोक संगीत, मंडी के भाव और मौसम की जानकारी। रात 8 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुर्खियों में। भोपाल केंद्र से ही रात 8:15 पर हम रिले करेंगे कार्यक्रम डगर विकास की।

रात 8:30 पर सुनिएगा एक रेडियो रिपोर्ट, द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिसिंग चैलेंजेस एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स। रात 9:16 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन हम लेकर आएंगे रात 9:30 पर।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 10 बजे हम अनुप्रसारित करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।
1: बारह जुलाई दिन रविवार को रात्रि 8:30 पर सुनिए द रोल ऑफ जेंडर इन पुलिसिंग चैलेंजेस राइट्स एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स। इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वृक्ष मित्र कार्यक्रम को किया संबोधित। इंदौर में मुख्यमंत्री ने 21,00,000 पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया। और प्रदेश में तेज बारिश, 4 दिन का ब्रेक। आज 27 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 322,29,00,000 रुपए की लागत के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दीं।

0: सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों का सम्मान और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी।
1: 1835 करोड़ की लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली, 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी नजर आया है। चंबल अंचल के इतिहास में पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी उम्मीदवार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। उधर कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। घनश्याम सिंह भी कल नामांकन पत्र भरेंगे। इसके अलावा दतिया से आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2023 में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 GCC डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य उच्च विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले 2 संस्करणों ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी निवेश को नई गति प्रदान की है। कॉन्क्लेव 1.0 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 75,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। कॉन्क्लेव 2.0 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 48,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,02,006 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा NCT पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है। श्री चौहान ने यहाँ अर्थ यानी पृथ्वी का अनोखे अंदाज में अर्थ समझाया।
4: गलती की RTH। अभी आपको बताएं, कमरे से निकलो एनर्जी, छोटी चीज है बिजली का स्विच ऑफ कर दो।

0: ये प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा आफ करेगा। ऐसे अवॉइड प्लास्टिक की बात। सब्जी लेने जाओ तो कपड़े का थैला ले जाओ, तो कागज की थैलियां भी बन रही है। नल टपक रहा हो तो टोंटी ठीक से बंद करो, नहीं तो सुधरवाओ। पानी की बोतल में आधा पानी मत छोड़ो, बोतल संग लेके जाओ, एक एक बूंद पियो। कई बार वो भी चलता है, पी दो घूंट और फेंक दी। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, ट्रैस मैनेजमेंट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग, खाओ और कहीं भी फेंक दो, ये आदत बदलनी पड़ेगी। और ऐसे हेल्दी फूड, मोटा अनाज।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत बीएसएफ पहाड़ी से 21 लाख पौधारोपण के अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि जो हमें जीवन दे, सदमार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी और वसुधा का श्रृंगार भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा एक पेड़ माह के नाम अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र तैयार होता है, ये अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सहभागिता की। शिवपुरी जिले में पीएम पोषण योजना के तहत कुल 2500 स्कूलों के 1,593,524 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी 2,149 स्वसहायता समूह के पास है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज और भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होगी। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की अनुमान जताया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में लाडली बहना योजना के तहत 38वीं किश्त से 2,26,846 महिलाओं के खातों में राशि जमा हुई। राजगढ़ के चारपुरा गांव में कल आयोजित हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले को मार्च 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई, यहां 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले के कानड़ में आयुष मेडिकल ऑफिसर ने माँ और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सही समय चुनना और 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने के बारे में जानकारी दी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में सतर्कता विभाग की 2 दिवसीय कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा मौत मामले में एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ये आकाशवाणी
7: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

अगला किसान भाई बहना का प्रियंका की राम राम। भाई बहना, इना टेम अपना खेत नाम काम का जोरों पर है और फसल का काम और देखरेख का साथ साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी भी खेती की तरह मेहनत से चल है और इन्हीं सब व्यस्तता का बीच हम अपना घर परिवार की सेहत को भी अपना पूरा ध्यान रखना है और ख़ास तौर पर अपनी जो भाई बहना है जो हमारी घर की नींव है और आने वाला कल की जन्मदात्री है। भाई बहना, आज अपन एक बेहद जरूरी सरकारी योजना पर चर्चा करेंगे। शासन की ऐसी मुहिम जो ग्रामीण क्षेत्र नाम खास तौर पर गर्भवती महिला ना का स्वरूप वरदान साबित हुई रही है। जी हाँ, हूँ बात करी रही है जननी सुरक्षा योजना की। भाई बहना, आज अपन जानेंगे कि कैसे यह योजना हमारा ग्रामीण परिवार का आर्थिक और सुरक्षा का संबल दे रही है। भाई बहना, हमारा गांव नाम आज भी कहीं कहीं यह सोच है कि भाई जो गर्भवती महिला है उको प्रसव घरज पारंपरिक तरीका से कराना है, पर बहना यो तरीको माँ और बच्चा दो का लिए जान का लिए जोखिम भरियो ही सकते है। इना जोखिम का खत्म करने का स्वरूप भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई। अने इन योजना को सीध उद्देश्य योज है कि भाई जो अपनी माता है और जो बच्चों है उको सुरक्षित रहे बचपन और माता भी जो रहे वह भी सुरक्षित रहे। यानी हर गर्भवती बेड़ना का घर में नहीं बल्कि अस्पताल या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना की देख रेख में प्रसव होए और जब प्रसव अस्पताल में होएगो तो जच्चा अन बच्चा दो ही सुरक्षित रहेगा। अब ऐसा में कई जो भाई बहना है भी आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो भी ऐसा में यो भी सोचे कि हाँ अब अस्पताल कैसे जावांगा, कितरो खर्चो आएगो, तो इन्हीं चिंता का चलता अभी अस्पताल नहीं जावा। तो इन्हीं चिंता का दूर करने का लिए भी जो शासन है उन्हें नगद वित्तीय सहायता दई, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती महिला है उनका अस्पताल न प्रसव कराना पर सीधा 1400 रुपया की नगद सहायता दी जाए। शहरी क्षेत्र में यह राशि 1000 रुपया है और यह जो राशि है वह सीधा लाभार्थी महिला का बैंक खाता में ट्रांसफर करी जाए। एक में जो अब हमारी गांव की आशा दीदी ना है उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी जो आशा दीदी है वे एक बड़ो पुल को काम कर, जैसे ही गाँव में कोई बहन जो है वह गर्भवती है तो को समय पर पंजीकरण कराए और साथ प्रसव का समय गाड़ी बुलाना सा लीन अस्पताल तक ले जाना तक हर कदम पर भी साथ खड़ी रहे। अभी का सरो जो लाभ लेने का लिए कौन सी बेड़ना पात्र है तो कोई भी बेड़ना जो ग्रामीण परिवार की है या शहर की भी है वे गर्भवती महिला ना पात्र है। वे सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर यो जरूरी है इन योजना का तहत कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन तीनों में से एक में कहीं भी प्रसव होना जरूरी है। और एक में जो जरूरी दस्तावेज है, बहुत कोई ज़्यादा सो दस्तावेज नहीं है कि उकाले तुम्हारा कहीं अलग से कहीं कागज बनवाना है। आधार कार्ड अपना सबका नजर रही है तो महिला जो बेन गर्भवती है उनको आधार कार्ड, साथ उनका जो बैंक खाता की पासबुक की फोटोकॉपी है वह और साथ निवास प्रमाण पत्र या फिर कोई अपनो वोटर आईडी, इससे तुम आसानी से इन योजना को लाभ ले सकता हो। तो भाई बहना, खेती में अपनी अच्छी पैदावार जितनी जरूरी है ऐसा ही हमारा परिवार में भी स्वस्थ बच्चा की किलकारी गुंजनो उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। तो अपना जब भी इन्हीं चीज ऐसा अपना घर में अपना आसपास कोई बेई बहन ऐसा गर्भवती है तो उनका अपना यो भी जानकारी जो अपना करना है वह उनका भी अपना कोशिश करना है कि देनी है जिससे कि सुरक्षित प्रसव हो और बच्चों भी सुरक्षित रहे। बात तो अभी हमारा कर नरी सारी है पर मन करी रहे है कि अपन कार्यक्रम में एक गीत लोकगीत सुनी ला और फिर बातचीत करा। तो सुना अपन भाई रतनदास बैरागी को गायो यो प्यारा सो लोकगीत।

भाई बहना अभी अपन भाई रतन दास बैरागी और साथी ना को गायो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। और जहाँ थोड़ी सी भी बारिश की शुरुआत हुई जाए चारी तरफ हरियाली ही हरियाली छाई जाए। और बाहर तो ठीक है लेकिन अपना जो खेत ना है उनमें भी अब क्योंकि खरीफ को मौसम है और हमारा खेत ना में भी धान मक्का सोयाबीन और पन्ना कपास की फसल लगाई रखी है। और हमारा किसान भाई बहना दिन रात एक करीन

0: मां मेहनत करीन खेती बाड़ी का कामकाज में लग्या हुआ है। भाई बहना यो मौसम जो है जितनी खुशी ली ना है उतो ज हमारा मन में एक डर भी बन्यो रहे। अब वो डर कहीं है, वो डर है मौसम का मिजाज को। कभी अचानक से सूखो पड़ जाए, कभी अचानक से भारी बारिश हो जाए, या तो कभी बाढ़ या फिर ओलावृष्टि हो जाए, जो हमारी महीना की महीना अपन जो कई महीना से जो अपन मेहनत करा उन्हीं मेहनत का पल भर में मिट्टी में मिले दे। और जब फसल खराब होए तो सिर्फ अनाज का नुकसान ही नहीं होए भाई बिरना, जबकि हमारा जो नारा किसान भाई बिरना है वी कर्ज का जाल में भी फंसी जाए, यानी कि एक बड़ो वित्तीय जोखिम खड़ो ही जाए। तो असामा खरीफ का मौसम में वित्तीय जोखिम कम करना में फसल बीमा की कई भूमिका है। इना विषय पर अपन एक भेंट वार्ता सुनांगा जिकमा की तुलसाबेन बातचीत करी रही है डॉक्टर नेहा द्विवेदी से, जो कि सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र विभाग कृषि महाविद्यालय इंदौर से है। तो सुना अपन उनकी या चर्चा।
1: किसान भाई नोनी, अभी बरसात को मौसम चली रो न, इना मौसम में हमारा किसान भाई अपना खेत में फसल भी बोवज न, फसल बोवज न ओका में असो छे कि फायदो भी हो न नुकसान भी हो। तो एकाज पहले हम फसल को बीमो कराड़ी लेवा। तो इन्हीं सब बात न का जानने का लेना आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित छे डॉक्टर नेहा द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र विभाग कृषि महाविद्यालय इंदौर सी। तो डॉक्टर नेहा द्विवेदी जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैम, और सभी किसान भाइयों को जो यह कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरी राम राम।
1: डॉक्टर नेहा द्विवेदी, जसो कि अभी खरीफ को मौसम चली रो, तो इना मौसम में वित्तीय जोखिम कम करना में फसल बीमा की भूमिका बहुत ज्यादा रहे। तो सबसे पहले तो आप हमारा किसान भाई ने कहिए बताओ कि खरीफ मौसम से किसान भाई ने का सामना काई काई वित्तीय जोखिम आवज।
2: जी मैम, तो जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि खरीफ की जो खेती होती है खरीफ के मौसम की, वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है भारतीय परिवेश में। और यदि समय पर बारिश ना हो या बहुत अधिक बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए या कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाए, तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जब आपकी फसल खराब हो जाए, उसमें जो किसान है उसकी आय रुक जाती है और आर्थिक संकट से उसे जूझना पड़ता है। तो इस जो वित्तीय जोखिम है या आर्थिक जोखिम जिससे किसान जूझता है, तो उसको कम करने में अगर उसने फसल बीमा करवा रखी है अपनी फसलों की, तो फसल बीमा से वह सुरक्षित और जो उसका जोखिम है वित्तीय जोखिम को कम करने में बहुत भूमिका निभाता है फसल बीमा योजना।
1: अच्छा, तो फसल बीमा काई हो न किसान भाई न का लेना, ये किस प्रकार से काम करे जी?
2: जी, फसल बीमा एक ऐसी योजना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी फरवरी 2016 से। तो इसमें किसान बहुत कम प्रीमियम, जैसे खरीफ में केवल 2% प्रीमियम देय होता है किसान को, और रबी के सीजन में 1.5% प्रीमियम देय होता है। तो प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा किसान कराता है। यदि प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक वर्षा हो जाए या अन्य अधिसूचित कारण। अधिसूचित कारण मतलब कुछ ऐसे कारण जो जिसका अनुमान प्रायः नहीं लगाया जा सकता है, जैसे चक्रवात आ जाए या सुनामी, इस तरह की कोई अगर संभावना है किसी चीज़ की, तो फसल को नुकसान होता है। तो बीमा, जो फसल बीमा योजना है, कंपनी निर्धारित नियमों के अनुसार किसान को उससे मुआवजा मिलता है। इससे किसान को आर्थिक सहारा मिलता है और वह अगली फसल की तैयारी कर पाता है। तो सरकार की जो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 के अंतर्गत, इसमें खरीफ फसलों के लिए किसान को केवल बीमित राशि का 2% प्रीमियम देय होता है। बाकी प्रीमियम का जो बड़ा हिस्सा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% वो वहन करती है। तो इस तरह से काफ़ी आर्थिक मदद मिल जाती है किसान को अगर उसने फसल बीमा करवाई होती है।
1: अच्छा, किन किन परिस्थितियों में फसल बीमा हमारा किसान भाई कराड़ी सकन, उनका कई लाभ मिला फसल बीमा कराने
2: जी से? तो हम अगर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, अधिसूचित मतलब जिनका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ की स्थिति हो गई, जल भराव की स्थिति हो गई, चक्रवात, भूस्खलन, कई भारतीय राज्यों में आते हैं, बादल का फट जाना, प्राकृतिक आपदा कोई हो गई, या आग या बिजली गिरना। तो ऐसी परिस्थितियों में या फिर कीट एवं रोगों से व्यापक नुकसान हो जाता है जब, तो किसान बीमा का लाभ, जो फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते सकते हैं और स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का भी कई मामलों में प्रावधान है। तो फसल का नुकसान हो जाने की स्थिति में सबसे पहले किसान को निर्धारित समय

0: के भीतर ही अपने नुकसान की सूचना देनी होती है, क्योंकि अगर सूचना देर से दी तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। तो सूचना आपको समय पर देनी है। बीमा कंपनी को दे सकते हैं आप, बैंक को दे सकते हैं, कृषि विभाग, या एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है जिसको हम CSC बोलते हैं, या फिर एक हेल्पलाइन नंबर जो है आपका फसल बीमा योजना, आप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी यह सूचना दी जा सकती है। और समय पर सूचना देने से जो दावा प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो जाती है और अच्छे से सुचारू रूप से आपको लाभ मिल पाता है।
1: अच्छा, ये तो आपने बताया कि फसल, जब भी हमारी फसल खराब होए तो का जल्दी से जल्दी मतलब तुरंत अपन करी देवांगा तो अपन को फायदा मिलेगा।
0: जितनी जल्दी किया जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि आकलन सही हो पाएगा कि कितना नुकसान हो पाया
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा, तो कहाँ करना पड़ेगा एक बार में जानकारी अपन को?
0: या तो हम हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं, या CSC या जो बीमा बैंक है जहाँ से हमने ये प्रीमियम हम अपना भरने जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वो सरकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, उनके माध्यम से आप ये सूचना उनको दे सकते हैं।
1: हाँ, कि भाई हमारी फसल खराब हो गई ना, हमको बीमा कराना है।
0: क्योंकि जितनी जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन उधर देंगे आपको उतनी जल्दी वो आएंगे और आकलन कर पाएंगे सिचुएशन देखकर।
1: बिल्कुल। तो कई सभी किसान भाई जिनकी फसल, जो भी अपन कह नहीं सकता प्राकृतिक आपदा कोई भी आई सकत, तो सभी किसान भाई जिनकी फसल खराब हो गई वो बीमा कराड़ी सकत, या नहीं भी खराब हुई का पहले भी कराड़ी सकत कहीं?
0: जो फसल बीमा है अगर आपको उसका लाभ लेना है तो आपकी फसल जब खराब नहीं हुई है उसके पहले ही आपको इस बीमा के अंतर्गत अपने आप को अनुबंधित करना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर आपकी फसल खराब होगी उसके बाद नहीं मिलेगा आपको इसका लाभ। आप जैसे अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, आपने रबी में जैसे आपने बुआई करने के पहले आपको जाना है अपना जो बैंक है या CSC सेंटर है, और वहां पर आपको कितने खेत का में जो आप बुआई करवा रहे हैं,
1: कितनी
0: जमीन है
1: करें।
0: और आप उसके लिए वहां पर जाके उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें हम ये फसल की बुआई कर रहे हैं और हमें इतनी जमीन का हमें फसल बीमा चाहिए। तो आपको फसल की बुआई करवाने से पहले लेनी होगी ये सुविधा।
1: तभी मतलब अभी जो हमारे किसान भाई खरीफ की बुआई करी रहे, तो खरीफ की बुआई करने से पहले भाई उनको बताइए, जानकारी देना पड़ेगा कि हम हमारा खेत में सोयाबीन लगे रहा है कि कपास लगे रहा है, जो भी फसल लगे रहा है
0: कितने क्षेत्र में,
1: कितना क्षेत्र में लगे रहा है।
0: और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि सभी जो किसान है सभी पात्र हैं, तो सभी जिनके पास पात्रता है, दस्तावेज उपलब्ध हैं, फिर वो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो या मध्यांतर किसान हो, सभी किसान भाई वो बट्टाई में अगर लेते हैं जमीन, वो भी अगर उनके पास
1: दस्तावेज खेती ली रहा खेती
0: हाँ, तो उनको भी इस जो सुविधा है इसका लाभ मिल सकता है।
1: अच्छा, तो ये फसल बीमा को लाभ लेने के लिए अपन को कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए अपना?
0: आपके पास जो आपके जमीन के कागजात हैं वो होना चाहिए, अगर आपने बट्टाई में लिया है तो जिससे लिया और कितने पैसे मिले, कितने समय के लिए आपने लिया है।
1: अच्छा।
0: ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर आपकी जो जमीन है वो हेरिडिट्री है, मतलब आपके पूर्वजों से मिली है, तो उसका भी आपके पास पट्टा होना चाहिए,
1: पूरे वो तो कागजों का होएगा
0: जी जी
1: आधार पर। अच्छा, तो कई फसल बीमा का साथ साथ किसान भाई ना का आरू भी कोई सावधानी रखनी चाहिए ना मौसम में अपनी जो फसल का, कि भाई कोई नुकसान नहीं अपनी फसल का, जितनी फसल अपन ने लगाई उसको अपन का फायदा मिला, मतलब लागत कम लगन और उत्पादन ज्यादा मिला।
0: जी बिल्कुल। देखें, फसल बीमा जो है वो आपके जो वित्तीय जोखिम है उसको कम कर देती है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई कर देगी।
1: अच्छा।
0: इसलिए जो किसान है उसको फसल बीमा सुरक्षा तो देता है, पर इसके साथ साथ उसे जो जिन बातों का ध्यान रखना है खेती में वो ये है कि उसको समय पर बुआई करानी है। जो समय जैसे कि आपके जो कृषि विभाग हैं, KVK सेंटर्स होते हैं, वहां से आपको बताया जाता है कि इस दिन इस मौसम में आपकी बारिश शुरू हो जाएगी, तो बुआई का जो समय उन्होंने निर्धारित किया या आपको बताया हुआ है, आपको फसल की बुआई उस समय पर करनी है। उसके बाद प्रमाणित बीज ही लेने हैं आपको, क्योंकि अगर प्रमाणित बीज हैं तो बहुत कम इस तरह के चांसेस होंगे कि वो खराब हो जाएंगे। दूसरा, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जितना डोजेस बताया है KVK सेंटर या कृषि विभाग ने उतने ही डोजेस देने हैं आपको, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे आपकी आय भी बढ़ेगी और आपको कुछ मुनाफा भी नहीं होगा। तो आप जो हम कहेंगे कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना है आपको, जल संरक्षण का ध्यान रखना है, कीट एवं रोगों की नियमित तथा मौसम पूर्वानुमान इसका भी आपको ध्यान रखना है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मौसम विभाग आपको समय समय पर बताता रहता है, चेतावनी देता रहे, आपको उसकी भी उसको भी ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपको कृषि कार्य अपने करने हैं ताकि आपका जो जोखिम है वो कम हो जाए, पर फसल बीमा आपको बहुत हद तक ये जो सारी समस्याएं हैं, जो वित्तीय संकट है, अनसर्टेन सिचुएशन है, उससे बाहर निकालने में काफी मदद करता है।
1: अच्छा।
0: तो आपको जितने भी किसान भाई हैं हमारे जो खेती कर रहे हैं खरीफ में या रवि में, उन

0: सभी को हम ये सलाह देंगे कि आप अपनी जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं अपनी, उसके लिए आप अपनी जो फसल बीमा जरूर से करवाएं।
1: अच्छा, फसल बीमा के बारे में आरू कहाँ कहाँ की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अपना किसान भाई ने को मालूम होनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात तो ये कि आपकी किस किस फसल को फसल बीमा के अंतर्गत आ रही, तो जितने अच्छा। भी आपके सीरियल क्रॉप्स होते हैं या दलहनी फसलें हैं और ऑयल सीड्स क्रॉप होती हैं, तो आपकी इन सारी ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी फसलें हैं सबको फसल बीमा के अंतर्गत सरकार ने लिया
1: मतलब
0: हुआ।
1: चाहे वो अनाज वाली फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, कोई सी भी फसल हो, तो सभी फसलों को अपन बीमा करा ही सकते।
0: जी जी, तो आप उसका करवाएं। और दूसरा, आपको बीच बीच में अभी तो क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा कर रहे हैं जो प्रीमियम, तो बहुत कम प्रीमियम दरों पे आपको मिल रहा है।
1: अच्छा।
0: तो ध्यान से उन्हें करवाना चाहिए जाकर। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके दस्तावेज हैं, और मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फसल का नुकसान हो गया तो आप उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत टाइम पर दें,
1: समय पर
0: दें। क्योंकि अगर आप समय पर नहीं देंगे तो सही आकलन नहीं हो पाएगा कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है, तो आपको हो सकता है कि मुआवजा कम मिले जितना आपका नुकसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अगर समय रहता आप दे दोगे वहां जानकारी, तो आपकी वो जानकारी मतलब वो आई ना देख ही लेगा ना, वो का अनुसार फिर आपको मुआवजा मिल जाएगा।
0: जी जी।
1: और चलते चलते आप हमारे किसान भाई ने कहा और कई कहना चाहोगा?
0: किसान भाइयों से बस मेरा यही कहना है कि इस बार जैसे कि मौसम विभाग ने पहले से ही आपको बताया हुआ है कि इस खरीफ का जो मौसम है इसमें बारिश कम होगी, तो आप उन फसलों को लगाएं जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। जैसे कि सोयाबीन की फसल, आपको पता है उसमें पानी ज्यादा लगेगा, तो उसकी बजाय आप उन फसलों को लो जिनमें कम पानी की जरूरत लगे, जैसे कि आपकी मूंग हो गई, उड़द हो गई, जिनमें कम पानी चाहिए, तो उन फसलों को आप इस जो खरीफ का सीजन है उसमें ज्यादा बुआई करें उनकी बजाय उनके जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता हो। क्योंकि इस बार जो पानी वर्षा है वो काफी कम होगी, पिछले जो 15 सालों में सबसे कम वर्षा इसी साल दर्ज की जाएगी।
1: तो मतलब ये बात को ध्यान रखा कि ऐसी फसल लगाओ अपना खेत में जेका में पानी की कम जरूरत पड़े।
0: जी।
1: अच्छा, तो अपना बहुत अच्छी जानकारी दी कि अभी हमारा किसान भाई जो अपना फसल खेत में लगाई रहा, तो ऐसी फसल ने लगाओ जेका में कम पानी लगा। साथ साथ अपन ये भी ध्यान रखा कि अपन जो भी फसल अपन लगाई रहा उको बोने से पहले उको बीमो करा लेवा, जेका से अपने जब भी फसल लगाना जाई रहा न उका में कोई आकस्मिक दुर्घटना हुई जाए, न अपनी फसल खराब हुई जाए, तो अपन का तुरंत उको मुआवजा भी।
0: प्रमाणित बीज और संतुलित उर्वरक ही देना है।
1: हाँ, एक बात को ये भी ध्यान रखा कि जो भी बीज अपन लगाई रहा वो प्रमाणित बीज लगा, न जो भी उर्वरक थे वो भी जितनी मात्रा अपन का कृषि का द्वारा बताई मात्रा को उपयोग करा। तो डॉक्टर नेहा द्विवेदी जी, आप हमारा कार्यक्रम में आए, अपना किसान भाई ना खरीफ का मौसम वित्तीय जोखिम कम करना में फसल बीमा की काई भूमिका रहे एक बार में इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, और सभी कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाइयों को राम राम।
2: भाई बहना, अभी अपन भेंट वार्ता सुनी जी को विषय थो खरीफ का मौसम में वित्तीय जोखिम कम करना में फसल बीमा की भूमिका, और एक में अपना जानकारी दे रही थी डॉक्टर नेहा द्विवेदी, और उनसे चर्चा करी रही थी बहन तुलसा दरगैया। तो या तो कितनी अच्छी बात उन्होंने अपना बताई दी है कि अपना मौसम को भी जो अंदाज अभी अपना बताई दियो है उन्हें हिसाब से अपना काम करना है, और साथ साथ यो भी ध्यान रखना है कि अपन अगर ऐसी ज़्यादा बारिश या किसी कोई भी वजह से अगर अपनी फसल खराब हुई की है तो अपना समय पर उसकी जानकारी देना है, ताकि जो नुकसान को आकलन सही तरीका से हो सका और अपना उको सही जो भी अनुदान अपना मिलेगा उसका बीमा का पैसा अपना जो मिल सकेगा भी सही मिल पाए। तो यूँ भी भाई बहना, आप तम कहाँ भी कभी दुकान से कोई नवो मोबाइल खरीदो तो उको कवर अन स्क्रीन गार्ड तुरंत लगवा लो, ताकि गिरना पर उको नुकसान नहीं हो। इन बात को तो अपन उत्ती वक्त फट से ख्याल रखेला, चाहे अपन नवी गाड़ी भी खरीदा तो उको भी बीमा हाथों हाथ करवाएं, जिससे कि अगर कहीं ऐसी दुर्घटना घटी जाए तो अपनों कम से कम नुकसान हो। तो फिर जो अपनी फसल है, जो अपनी पूरा साल की कमाई को जरियो है, जो अपनी पूरी गृहस्थी का चलावा, तो फिर उको बीमो क्यों नहीं अपन टेम पर करावा? तो अपना का ना भी टेम है, तो अपना अपनी फसल को बीमो जरूर से कराना है। थोड़ो सो अपना काम काज का बीच में अपना समय निकालना है, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो जरूर से अपना फसल बीमो करवाना है। अब बातचीत नरी सारी हुई की है, जानकारी भी अपना खूब अच्छी अच्छी मिली गई। अब कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनीला, सुना अपन बेन शारदा पगारे को गायो यो लोकगीत।

भाई बहन ना शारदा बहन को गायो यो प्यारो सो लोकगीत लोक भजन सुनी ना अपना जैसा असो लगी रहो कि अपनी दिन भर की सगली थकान सगलो तनाव पूरो दूर ही गयो है। भाई बहन ना योज तो हमारी लोकगीत ना की ताकत है जो हमारा अपनी मिट्टी से जोड़ी न रखा और हर मुश्किल से लड़ने की नवी ऊर्जा दे। जैसे मीरा बहन ना हर परिस्थिति में हार नहीं मानी, वसज हमारा किसान भाई बिरना भी हर मौसम की मार झेलिन मुस्कुराता हुआ धरती का सीना कर चीरिन अनाज उगावा, खूब मेहनत करा और हर समय लग्यो रहे। भाई बिरना अब जो जुलाई को महीनों है वो लगभग आधो बीती चुकियो है और मानसून भी शुरू हो चुक्यो है, पूरा रंग में है और हमारा खेत नामा चारी तरफ रौनक भी है। कहीं धान की रोपाई चली रही है तो कहीं सोयाबीन मक्का और कपास का छोटा छोटा पौधाना मिट्टी से बाहर इन हवा में झूमी रहा है। पर भाई बहन ना यो जो समय है यानी जुलाई को बीच में और जुलाई को अंत को जिकमा की खरीफ की फसल का लिए बहुत ही संवेदनशील समय रहे, इना समय एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी पूरी फसल पर भारी पड़ी सकती है। तो इना टेम अपन कहीं कहीं जरूरी काम कर सकता है। तो भाई बहना अगर कोई भैना न धान बोयो है तो उकालिए अभी अपना धान का खेत नामा रोपाई का बाद शुरुआती 10 से 12 दिन तक कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर पानी में खड़ो रहना देना चाहिए ताकि जड़ ना जो है अच्छी तरह से जमीन पकड़ी ले। रोपाई का लगभग 20 से 25 दिन का बाद धान में कल्ला निकलना शुरू हो जाए और यो समय रे जब अपना इना समय अगर पत्ती ना हल्की पीली या कत्थई रंग की दिखी रही है तो अपना समझ जानो है कि उकमा कहीं ना कहीं जिंक की कमी हुई है। तो ऐसा समय भी अपना कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेन अपनों को समाधान करना है। और बात करें अगर अपन सोयाबीन की तो सोयाबीन हो मक्का हो या फिर दलहनी फसल हो तो ऐसा में भाई बिन्ना अपना जो है अगर लगातार बारिश हुई रही है कहीं कोई क्षेत्र में तो ऐसा में अपना खेत नामा पानी भी जमा होने को डर रहे तो अपना बिना देर करे जो है जल निकासी की व्यवस्था करनी है, उनकी नाली ना अपना बनाई लेनी है जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई रही है तो जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकली जाए क्योंकि ज़्यादा पानी भरना सा अपनी जो फसल है उसकी जो पौधा ना है उसकी जड़ गली जाए, पौधा ना पीला पड़ी जाएगा और अपनी सगली मेहनत बेकार हुई जाएगी। तो अपना इन्हीं बात को तो खास तौर पर ध्यान रखनो छे और साथ ही इना समय यो भी होए कि भाई खर पतवार सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ऐसा में अपना टेम टेम पर निरीक्षण भी करना है और सोयाबीन मक्का या कपास जो भी अपन ने बोयो है उसकी बोनी का 20 से 30 दिन का भीतर अपना पहली निंदई गुड़ाई को काम हर हाल में पूरा करना है। अगर तुम हाथ से मजदूरी करें डोरा या कुलपा चले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लगातार बारिश का कारण खेत में पाँव रखने की भी जगह नहीं है तो खरपतवार ही यो है तो अपना कृषि विशेषज्ञ की सलाह लीन खरपतवार नाशी को उपयोग करना है। पर उससे अच्छा है कि अपन समय पर निरीक्षण करे न उसका निकाल दा तो अपना खरपतवार नाशी भी उपयोग करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इना टेम अपना जो है जुलाई को जो महीनों रहे उसमें उमस और नमी वाला मौसम में जो है कीड़ा और बीमारी ना बहुत तेजी से फैला तो ऐसा में सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी या फिर तंबाकू की इल्ली का जो अंडा ना है भी दिखना शुरू हो जाए तो अपना सुबह एक चक्कर सुबह भी लगाई लेनो सांझ भी लगाना है जिससे कि अपना अगर कोई ऐसी समस्या हुई रही है या पत्ती ना जो का नीचे कीड़ा ना छिपा है तो अपना समय पर ही कोशिश यो करना है पहला कि भाई नीम का तेल को अपन स्प्रे कर ला, यो अपना पर्यावरण का लिए भी अच्छा है और अपनी जेब का लिए भी सस्तो है। और हाँ खाद या जो भी अपन दवा डाली रहा है उसका पहला अगर अपन मौसम को हालचाल जरूर देखना है जिससे कि अगर तेज बारिश की संभावना है तो छिड़काव दवाई को अपना थोड़ो सो टाली देना है। तो अभी बातचीत करता करता मन करी जो है कि कार्यक्रम में अपन ने क्यों नहीं एक लोकगीत और सुनी ला तो सुना अपन बेन उषा रायकवार और साथी ना को गायो लोकगीत।

0: भाई बहन ना इना लोकगीत क गायो तो बेन उषा राय एकवार और साथी ना ना इका सातज घड़ी की सुई ना कीरी है कि आज का इना सफर का न्याज दा विराम। जय जवान जय किसान सब किसान भाई बहन ना का प्रियंका की राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी इंदौर है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से कुछ ही पलों में होगा।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
3: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6-8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो 3 देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं।
4: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था 3 देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं

0: उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं, और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है, बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो ब्राह्मोस मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे, और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के, सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो IT टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है, उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है, प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और KPU जनरल इलेक्शन कमीशन जो इंडोनेशिया का है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFC IOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी, और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासेरी में, और प्रम्बानान मंदिर जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की, उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 MOUs और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये एक, हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
0: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए, और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर कनेक्टिविटी कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो D's इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे हैं, उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई मार्च

0: हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए, उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का। तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब ये है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास के साथ साथ भारत का भी विकास हो, और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो, तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है, और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ एमओयूज इन तीनों यात्राओं में आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है, और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की, और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई, और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है, जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया, और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था, जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है, जिसमें जापान और अमेरिका भी हैं, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत पे, उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है, और इस वजह से ये सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें, तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं, और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे, हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं। और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीक

0: ही था, लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे, वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता है और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता है। न्यूजीलैंड, जिसने बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बढ़ा है और भारत की जो नीति है, चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है। आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अंक में हम जानेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो हमारे छोटे और सीमांत किसान भाइयों से संबंधित है। जी हां साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूर्ण होने पर छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना पर विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर, श्री भवानी शंकर गुप्ता।
1: भारत सरकार द्वारा निरंतर किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, और इसमें जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो किसानों की वृद्धावस्था के लिए चिंता करने वाली योजना है
0: जी,
1: और इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था, और उसी दिन से हमारे किसान भाइयों के उसमें पंजीयन प्रारंभ हो गए थे। और ये किसानों के लिए, चूंकि किसान 60 साल की उम्र में जब आ जाता है तो उस समय उसके शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण वो खेती किसानी का कार्य नहीं कर पाता है, तो वृद्धावस्था में उसको आर्थिक सहारे के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी।
0: जी, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपने इस योजना के प्रारंभ होने के बारे में बता दिया है। गुप्ता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना से जुड़ने के लिए किस आयु वर्ग के किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों को अगर इस योजना में जुड़ना है तो इसके लिए जो उनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए
0: जी,
1: और 18 वर्ष का कोई कृषक है वो भी जुड़ सकता है, और अधिकतम उम्र 40 रखी गई, 40 वर्ष का किसान इसमें जुड़ सकता है। और उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जैसे 18 वर्ष का किसान है तो उसको 55 रुपए प्रीमियम देना और पड़ेगा प्रति माह, और यदि वो 25 वर्ष का है तो उसको 100 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा प्रति माह, यदि वो 30 साल का है तो लगभग उसको 155 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 40 वर्ष का है तो 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण के लिए बताया है, वो जिस उम्र का है उसी से उसके प्रीमियम की गणना हो जाएगी और वो देगा। और कुल मिलाकर के इसमें ये है कि 100 रुपए अगर किसान दे रहा है तो 100 रुपए उसमें सरकार मिलाती है। ये जो योजना है, ये योजना इसलिए प्रारंभ की गई है कि एक तो ये बुढ़ापे में पेंशन किसानों को मिलने लगेगी, क्योंकि जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से हमारे किसानों को भी एक पेंशन मिलने के लिए ये योजना है। दूसरा, स्वैच्छिक एवं अंशदायी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर किसान को जुड़ना ही है कि उसको इसके लिए इसमें भाग लेना है, उसकी इच्छा है तो उसमें वो अपना अंश दे सकता है। 100 रुपए अगर वो दे रहा है तो 100 रुपए सरकार उसमें मिलाएगी। और दूसरी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वो उनके लिए मतलब अच्छी है कि बुढ़ापे में उनके लिए, क्योंकि बीमारियां भी हो जाती हैं, उसकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाती है किसान भाइयों की, तो एक छोटा सा सहारा उनके लिए इस योजना से हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि किसान भाइयों को अच्छे जल्दी से इसमें मतलब जुड़ना चाहिए, और प्रीमियम भी नाम मात्र का है, उसमें कोई ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं है।
0: गुप्ता जी, ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो कृषक वर्ग है वो बहुत विशाल है, इसकी जो पात्रता क्या है, क्या सारे कृषक वर्ग इससे जुड़ सकते हैं या किस वर्ग के किसान बंधु इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: इसके लिए मतलब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि उसके पास में 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन होना चाहिए
0: जी,
1: और उसके ऊपर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर जमीन, मतलब 5 एकड़ जमीन उसके पास है तो वो अपना इसमें पंजीयन करा सकता है
0: जी,
1: और उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, इस प्रकार से अगर वो है तो वो उसका लाभ ले सकता है इसमें।
0: बिल्कुल, आपने इसकी पात्रता के बारे में बता दिया है और आयु के बारे में भी बता दिया है। गुप्ता जी, अगर हमारे किसान बंधु, कुछ कृषक भाई इस पात्रता में आते हैं, कहाँ से वो पंजीयन करा सकते हैं, किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, इस योजना को पंजीयन कराने के लिए एक तो अपने कॉमन सर्विस सेंटर है
0: जी
1: वहां पर जाके किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं और उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा इसमें दो बैंक भी है, हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक है, वहां भी जाकर के हमारे किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को जो किसान पीएम किसान के अंदर जो धनराशि मिल रही है जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत, तो उनको वहां जाकर के बस बताना है, तो उसमें से उनका प्रीमियम को माला आवेदन दे देंगे, तो उनको जो आता है ना पीएम किसान योजना के अंदर जो राशि आती है
0: जी
1: 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की, तो
0: सम्मान
1: उसमें
0: निधि
1: सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना,
0: जी
1: तो वो वहां भी अपना आवेदन अगर बैंक में देते हैं उसमें से कर सकते हैं।
0: जी
1: इसी योजना को LIC द्वारा संचालित किया जा रहा है,
0: जी
1: और इस जो संचालन इसमें ऐसा है कि यदि किसी कारण से कोई किसान भाई के साथ में ऐसा ना हो और 60 वर्ष का होने के पहले ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान द्वारा जमा किया गई राशि है, सरकार द्वारा मिलाई गई राशि है, और उस पर जो बना हुआ ब्याज है, उस सब का भुगतान उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
0: जी
1: मतलब

0: इसकी और खासियत है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम चला गया तो अब पता नहीं क्या होगा। तो मतलब अगर 60 साल के पहले खुदा न खास्ता किसी किसान भाई के साथ में अनहोनी हो जाती है, तो वो किसान भाई को उसका जो जमा किया गया पैसा मतलब सरकार द्वारा मिला गया पैसा, इसके बाद उसपे जो बैंक के द्वारा जो भी ब्याज बना है उस पैसे को मिला करके उसके नामिनी को लौटा दिया जाता
1: जी
0: है। और दूसरी एक और खासियत इसकी है कि जैसे किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी इसमें पेंशन का प्रोविजन है।
1: जी
0: मतलब अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो जैसे 3,000 रुपये महीने किसान को मिलना है पेंशन, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो
1: जी
0: ये योजना बहुत अच्छी है। तो अशोकनगर जिले में 2019-20 से लेके और अभी 2026-27 तक 955 किसानों ने इसमें मतलब अपना पंजीयन कराया है।
1: जी
0: तो मतलब मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी योजना है, 18 से 40 वर्ष के किसान इसमें भाग ले सकते हैं, छोटे से प्रीमियम की राशि है, सरकार द्वारा उस प्रीमियम में कुछ प्रतिपूर्ति भी की जा रही है, मतलब कुछ अपना मिलाया जा रहा है, तो ये करने की जरूरत है।
1: जी
0: दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा,
1: हाँ जी
0: मतलब नॉमिनी जरूर करना चाहिए उसमें। मतलब जब आवेदन कर रहे हैं उस समय जो भी पत्नी या पुत्र वगैरह उसका नॉमिनेशन, नहीं तो क्या होता है कि कभी जैसे 60 साल की उम्र के बाद में किसान की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसको दी जानी है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा,
1: जी
0: 60 साल के पहले यदि किसी अनहोनी के कारण कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी जो प्रीमियम की राशि है, जो जमा की गई राशि प्लस सरकार द्वारा जमा की गई राशि प्लस ब्याज की राशि किसको लौटाई जाए, तो इसलिए नॉमिनेशन करना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही अच्छी सुविधाजनक योजना है और आपने काफ़ी सारी इसके लाभ बेनिफिट्स बता भी दिए हैं। अब एक प्रश्न ये मन में उठ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाइयों के पास कौन-कौन से कागजात ज़रूरी होना चाहिए?
0: ये अपन ने बहुत सारी चर्चा तो कर ली,
1: जी
0: लेकिन क्या है कि किसान भाई कहेंगे करना क्या है। तो देखिए क्या बोलते हैं, इसके लिए एक तो किसान का खसरा खतौनी की नकल होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और जो भी उसका जनधन खाता है या किसान का जो भी बैंक का खाता है वो खाता नंबर है, तो ये चीजें उसके लिए मतलब आवश्यक हैं। इन चीजों को लेकर के और वो आवेदन करता है तो उसका कचरा खतौनी की नकल हो गई, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया उसकी बैंक पासबुक, जो भी उसका जनधन खाता है या सामान्य खाता है बचत खाता है, और इसके अलावा मोबाइल नंबर, ये बस इतने चीजों की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल शब्दों में आपने किसान भाइयों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं और प्रीमियम्स पर बहुत विस्तार से आपने बातचीत की है कि किस एज में आप जुड़ेंगे तो क्या प्रीमियम रहेगा।
0: एक चीज और किसान भाइयों को मैं सलाह बताऊंगा, मतलब देना चाहूंगा कि जो प्रीमियम है उसको बीच में स्टॉप न करें, नहीं तो क्या होता है कि वो प्रीमियम जमा कर देंगे तो जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो 1 साल तक उसको चलाते हैं, उसके बाद में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो उसपे जो भी मतलब पेनल्टीज है तो उसको जमा कर दोगे तो पुनः चालू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इसको प्रारंभ करें तो इसको पूरा करें, और अगर वो उसके माध्यम से चलते हैं आपका क्या बोलते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जो किसान सम्मान निधि है तो उसमें से तो अपने आप ही क्या बोलते हैं स्वतः उसमें से राशि कट जाया करेगी, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज की सुविधा और दी है इसमें सरकार ने, मतलब किसान को अपना वो देखना है स्टेटस, तो स्टेटस देखने के लिए मानधन.in
1: जी
0: करके वो उसपे अपना वो भी देख सकता है कि मेरी कितनी राशि जमा हो गई क्या हो गया, तो अपनी उसकी पॉलिसी का स्टेटस भी देख सकता है।
1: जी
0: तो मतलब ये भी उन्होंने शासन ने इसमें भारत सरकार ने किया है, तो किसान भाई इसको मतलब अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं।

श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। डगर विकास की कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: आलेख और वाचन स्वरता हरिशंकर शिवहरे का, प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गुना केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए सुनिए रेडियो रिपोर्ट। द रोल ऑफ जेंडर पॉलिसिंग चैलेंजेस एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स।
3: दिनांक 11 जुलाई को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिसिंग चैलेंजेस राइट्स एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर वंदे मातरम गीत का गायन हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सीमा अलावा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
4: हम जब आए थे तब 33% महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होता था। हमारे यहाँ महिलाएं यदा कदा ही देखने को मिलती। फिर समय के साथ साथ है ना, महिलाओं के काम तो नो डाउट बढ़ने ही लगे। रिजर्वेशन आया, महिला रिजर्वेशन मिलने लगा, उसके बाद महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब संख्या बढ़ी तो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर डीएस हर लेवल पे ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। चाहे वॉशरूम का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका है ना छुट्टी का इशू हो, चाहे आपका पोस्टिंग का इशू हो, एज ए फीमेल ऑफिसर मैं ये फील करती थी कि आपका एक क्वेश्चन मार्क होता है किसी भी पहला असाइनमेंट देने के लिए, लेकिन जब आप उसको कर लेते हो तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा कि भैया। लेकिन ये महिलाओं को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, लेकिन पुरुषों को ये चीज एस्टेब्लिश नहीं करने, उनको कोई जॉब असाइन करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिसको अगर हम बात करते थे तो हमारी सुनी नहीं जाती थी, लेकिन फिर जब बात आई कि कैसे सुनी जाए आपकी बात, तो फिर ये बात आई कि हम रिसर्च के माध्यम से जब हम कोई बात कहते हैं तब ये बात सुनी जाती है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे हम जेंडर इक्विटी पे काम करना चाहते थे, हम वर्क प्लेस एनवायरमेंट पे काम करना चाहते थे। जो जो हम बात करना चाहते थे हमने अपने पीएचडी के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से हमने ये बात है ना पहुंचाई है। लेकिन चूंकि सबके क्राइटेरिया में होता नहीं है कि वो जाके वेबसाइट पे जाके हमारे रिसर्च को हमारे पढ़ ले। हमारे रिसर्च को पढ़ने के लिए आपको शोधगंगा जाना पड़ेगा, हमारे रिसर्च को आपको पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। लेकिन चूंकि सोसाइटी में पुलिस की प्रॉब्लम्स, पुलिस के सॉल्यूशन और पुलिस ने जो जो नए आयाम स्थापित किए हैं उसको हम समाज तक पहुंचाना चाहते थे, हमारे रिसर्च स्कॉलर तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए सर ये हमने बुक है ना बनाई है, जिसमें हमने अपने पीएचडी का कंटेंट है ना डाल के उसको हमने पब्लिश किया है, ताकि हम जन सामान्य तक अपनी बात और पुलिस की प्रॉब्लम्स और पुलिस का सॉल्यूशन और जो पुलिस ने, पुलिस मुख्यालय ने, शासन ने जो पुलिस के लिए जो नया आयाम स्थापित किए हैं वो हम इसमें दे पाए। तो एक छोटी सी कोशिश है कि जिसके माध्यम से है ना हम अपनी बात पहुंचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तत्पश्चात अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंती लाल भंडारी ने अपने संबोधन में कहा,
5: डॉक्टर सीमा अलावा जी की पुस्तक के इस विमोचन के अवसर पर साधुवाद देना चाहूंगा कि सचमुच आप एक ऐसे पवित्र और समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण समारोह के साक्षी और सहभागी बने हैं, जिस पुस्तक से न केवल मध्य प्रदेश को वरन

0: पूरे देश को महिला पुलिस भूमिका के बारे में एक नई रोशनी मिल रही है। अभी विमोचन के बाद जब मैंने सरसरी निगाह से इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पुलिस सेवा से संबंधित सैकड़ों किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन ऐसी पुस्तक, बिरला पुस्तक आज मैंने देखी है और ये बहुत बड़ी बधाई की पात्र है डॉक्टर सीमा लावत जी के लिए। हम ये देखें कि किसी समाज के लिए पुलिस सेवा की जो जरूरत होती है उसमें यदि महिला पुलिस की सहभागिता बढ़े तो समाज और देश का तेजी से विकास होता है। अब हम ये देखें कि सरकार ने क्या कहा। सरकार का कहना है, सरकार की गाइडलाइन है कि कुल पुलिस बल में 33% महिला पुलिस के रूप में होनी चाहिए। कई आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट हम देखें तो वो कहती हैं कि समाज का यदि तेज गति से विकास करना है, यदि देश का तेज गति से विकास करना है और अपराध रहित विकास करना है तो ऐसे में कुल पुलिस बल में महिला पुलिस बल की भागीता ज्यादा होनी चाहिए। हमें इस बात का बयान करना होगा पूरे समाज के अंदर कि यदि परिवार की बेटियां पुलिस बल में जाती हैं तो उनके लिए अवसर है, उनके सुरक्षा है और कोई भी चुनौती आती है तो सभी तरह की चुनौतियों के लिए उनके सामने मुकाबले के लिए परिस्थितियां हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी बातें इस पुस्तक में उठाई गई हैं। तो सचमुच एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पुलिस सेवा में महिलाओं की, महिला पुलिस बल की भूमिका की बात करती है।
1: इसके बाद देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने अपने उद्बोधन में कहा।
2: सर्वप्रथम सभी को सादर नमस्कार। माननीय मंच, श्री पवन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी जी, आज के हमारे डी आर्टिस्ट जिसको डिस्टिंक्ट विभूति दें हमारी सीमा जी, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक शोध कार्य है और शोध कार्य जो एक उसकी दिशा होनी चाहिए कि समाज में शोध की कई विषय होते हैं, उनमें से एक ये विषय, और जिस प्रकार से शोध, आप यदि इस किताब को पढ़ें तो इस किताब में कई ऐसे बिंदु हैं जो जाने अनजाने में बोले गए होंगे या उस पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया होगा, पर एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि करेज, एक महिला के व्यक्तित्व में यदि करेज देखे तो 198 महिलाएं हैं पुलिस में जो कार्य कर रही हैं, उन्होंने बोला कि हमें करेज आता है। कॉन्फिडेंस 84 ने बोला और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 176 में बोला। तो आप सोचिए कि ये जॉब, पुलिस का जॉब, जहां हम महिलाओं को करेज सिखाते हैं, जब महिलाओं को कॉन्फिडेंस की बात करते हैं हम शिक्षक लोग, और साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, ऑल दो मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं में 100% सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परंतु यदि आप इस जॉब को पा रहे हैं, जॉब के पाने के बाद आप में क्या परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर आशा शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए।
3: जो चैलेंजिंग संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, जिसको एक जेंडर पर्सपेक्टिव से एक पुरुषों के लिए तयशुदा कार्य माने जाते हैं कि ये नौकरियां पुरुषों के लिए ठीक है, महिलाओं के लिए, मतलब लड़की टीचिंग में है क्या, तो बढ़िया मानी जाती है कि तो ये वाले, मतलब हमने नौकरियों के भी जो रोल है वो जेंडर रोल्स डिफाइन कर रखे हैं। हम लोग उन जेंडर बैरियर्स को तोड़ना चाहते, लेकिन तोड़ने के लिए उन चीजों को गहराई से देखना था कि कैसे क्या होता है, कैसी स्थितियां हैं।
1: इसके बाद पवन श्रीवास्तव रिटायर्ड SDG CID ने अपने उद्बोधन में कहा।
4: ये जो किताब है द रोल ऑफ जेंडर इन पुलिसिंग, ये बहुत समसामायिक पुस्तक है, रिसर्च भी तुम्हारी बहुत समसामायिक है, लेकिन 30-35 साल में बहुत समय परिवर्तित हो चुका है, महिलाओं की संख्या भी बढ़ चुकी है और आप खुद देख करके बोल सकते हैं कि आज जब आप पुलिस वालों से मिलते हैं तो नीले रंग की शलवार कुर्ता में या नीले रंग की साड़ी में नहीं होती, वो खाकी पहनी होती है। ये खाकी पहनना ये दर्शाता है, मेरे सामने एक सब इंस्पेक्टर बैठे खाकी पहनकर, ये खाकी पहनना ये दर्शाता है कि उनको उस वर्दी में गर्व है, वो अपने आप को पुरुष पुलिस के इक्विवेलेंट समझती हैं और वो सब काम करने के लिए तैयार हैं जो एक पुरुष पुलिस वाला कर सकता है। और मुझे

0: देख करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब मैं निकलता हूँ रास्ते में, देखता हूँ पुलिस का नाका लगा हुआ है तो, या रेड हो रही है तो उसमें लेडी कांस्टेबल्स जो हैं वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी पोजीशन को, अपने योगदान को, अपने अपने सामर्थ्य को पहचाना है, मुझे लगता है जैसे प्रोफेसर सिंघई ही बोल रहे थे कि 2047 में अमृतकाल चल ही रहा है, 2047 में जब हम विकसित भारत हो जाएंगे उस समय की महिलाएं जो होंगी वो ये इंश्योर करेंगी कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो बहुत कुछ क्राइम फ्री हो और उसमें लेडीज का योगदान बहुत ज्यादा होगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि लेडीज ने, जो महिलाओं ने जिस तरीके से अपने आप को पहचाना है, अपने सामर्थ्य को पहचाना है, तो आगे आने वाला समय जो है वो और रोचक होने जा रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। आज एक और बड़ी चीज थी राम रेखा, जिसको एक एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। राम रेखा आप सबको मैं बताना चाहूंगा, उसके बारे में बहुत बात नहीं हुई। ये एक 50 मीटर लंबी पेंटिंग है जिसमें रामायण के 54 अलग अलग दृश्य पेंट किए गए हैं। वो लीड पेंटर उसमें सीमा है, आपने देखा है यहाँ पे पेंटिंग भी लगी हुई है। लीड पेंटर सीमा है और उनके एक टीम है जिन्होंने मिलकर के वो बनाया है। मैंने तो उसका वीडियो देखा है, मैं उसको खुद नहीं देख पाया हूँ। लेकिन ये बड़ी चीज है कि जब हम लोगों ने बाकी सब टैलेंट की बात की, विधाओं की बात की, तो इसमें पेंटिंग जो है एक बड़ी चीज है। और एक कलाकार है जो अपनी जो थॉट है उसको पेंटिंग करके उतार रहा है।
1: कार्यक्रम में राम रंग पेंटिंग के विषय में डॉक्टर सीमा अलाबा और उनके साथियों ने राम रंग नामक एक पेंटिंग का विमोचन भी इस कार्यक्रम में किया गया, जिसके विषय में सीमा अलावा ने जानकारी दी।
2: क्योंकि काफी समय हो गया है, मैं बस शॉर्ट में थोड़ा सा अपना राम रंग जो मेरी पेंटिंग है उसका नाम है राम रंग वाल्मीकि रामायण के अद्भुत चित्र यात्रा। मैं एक विशेष कला प्रयास है जो कि है ना वाल्मीकि रामायण की एक यात्रा के रूप में परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ उसका, कि वो क्या है। लगभग 164 फीट 50 मीटर लंबी एकल चित्रकला है जिसमें हमने भगवान राम, श्री राम के संपूर्ण जीवन को रंगों के माध्यम से जीवन करने का प्रयास किया है। इसी कारण इस चित्र यात्रा का नाम राम रंग रखा गया है, अर्थात रंगों में साकार हुए राम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण विश्व का प्रथम महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 500 से अधिक सर्ग और 7 कांड हैं। हमारी इस यात्रा में उत्तर कांड को छोड़कर 5 प्रमुख कांडों में 54 हमने चयनित है प्रसंग लिए हैं जिनको हमने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। प्रत्येक चित्र केवल एक दृश्य नहीं बल्कि श्री राम के जीवन एवं आदर्शों का सजीव चित्रण है। वाल्मीकि रामायण को पोलत्सवध तथा दशानंद वध के नाम से भी जाना जाता है, उसको किंतु हमने रामनंग नाम दिया है। हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि श्री राम के आदर्शों को रंगों में अभिव्यक्त करना था, इसलिए हमने इसका नाम रामनंग रखा। रामनंग केवल चित्रों का संग्रह नहीं बल्कि असाधारण पुरुष की जीवन यात्रा है जो केवल एक राजा नहीं बल्कि महानता के सर्वोच्च आदर्श है। भगवान राम, श्री राम मनु के वंशज इक्ष्वाकु कुल में अवतरित हुए। इस गौरवशाली सूर्य वंश में अनेक महासम्राट हुए। महाराजा प्रथु जिनके नाम पे धरा को जाना जाता है, पृथ्वी कहा जाता है। महाराजा सगर जिनको है ना समुद्र का नाम जो सागर जो उन्हीं के नाम पे कहलाया है और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने सागर को खोद दिया था। राजा रघु जिनके नाम पे है ना रघुवंश है ना रघुकुल कहलाया। महाराजा त्रिशंकु वो थे जिन्होंने है ना आपके अपने लिए एक नए स्वर्ग की है ना जीत करी और उनके लिए एक नया स्वर्ग का निर्माण करना पड़ा। महाराजा भगीरथी भी उन्हीं के कुल के थे जिन्होंने गंगा को है ना धरती पे लाया। इसी तरह चक्रवर्ती राजा दशरथ जिनके पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे मन को वश में करने वाले महाबली धैर्यवान जितेंद्रिय सत्य प्रतिज्ञ नीति के ज्ञाता धर्म के रक्षक वेद वेदांग के तत्वज्ञ धनुर्विद्या में प्रवीण। उनका जो भगवान राम का जो उन्होंने वर्णन किया है उनके विशाल कंधे थे, उनकी भुजाएं घुटनों तक आती थी, शंख के समान उनकी ग्रीवा थी, विशाल नेत्र तेजस्विनी मुखमंडल और दिव्य व्यक्तित्व एवं शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं एक महान चरित्र के प्रतीक थे। ऐसे श्री राम थे। गंभीरता में समुद्र के समान।

0: धैर्य में हिमालय के समान, सौम्यता में चंद्रमा के समान, क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग में कुबेर के समान एवं धर्म के पालन में धम्मराज के समान, ऐसे थे हमारे श्री राम। यह केवल एक कला प्रयोजन नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा, हमारी साधना और श्री राम के आदर्शों को उनको समाज में पहुंचाने की एक सिर्फ संकल्पना है कि इसके माध्यम से हम श्री रामायण को हम है ना जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ हर्ष जाटव और निषाद है, दोनों ने मेरे साथ है ना काम किया है। हम तीनों ने मिलकर इस रामायण को 6 महीनों में पूरा किया है। मैं ना आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि इसको एक्सीलेंस अवार्ड के लिए भी रजिस्टर्ड हुआ है।
1: राम रंग पेंटिंग को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। इस संबंध में अवार्ड देने वाले संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया।
2: और जब इनका राम रंग का मैंने कार्यक्रम सुना तो मुझे बड़ा गौरवान्वित हुआ इस चीज को रिकमेंड करने के लिए हमारे संदीप सिंह जी को, जो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के डायरेक्टर हैं और क्योंकि जूरी बोर्ड का मेंबर भी हूँ, UNECD के लिए भी काम करता हूँ, तो पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग अपने संपर्क हैं। मैंने संदीप जी को कहा कि इतना बड़ा जो काम है जो सीमा जी ने किया है उसको जरूर कहीं ना कहीं आपके पटल के ऊपर उसको उल्लेखित होना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ संदीप सिंह जी का भी, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी जूरी को इसके लिए कन्विंस किया, मीटिंग हुई और ये अवार्ड जो है असीमा अलावा जी को सुशोभित किया।
1: इसी के साथ कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और इस कार्यक्रम का समापन हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिसिंग चैलेंजेस एंड वर्कप्लेस डायनामिक्स पर एक रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से और रात 9 बजे सुनिएगा न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज

0: जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा।

0: और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय

उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत का आरंभ हम कर रहे हैं दुपट्टा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है नूरजहां ने।

दुपट्टा फिल्म का गीत अभी आपने सुना नूरजहां की आवाज़ में। मुशीर काजमी ने इसे लिखा था और संगीत था फिरोज़ निज़ामी का।

कमर जलालाबादी की लिखी हुई ये रचना लीजिए अब सुनिए। सज्जाद हुसैन ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम है रुस्तम सोहराब, आवाज़ सुरैया की।

चित्रगीत में लीजिए आप सुनिए सुबीर सेन की आवाज़ में कठपुतली फिल्म का ये गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत शंकर जयकिशन का।

मन भवन के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपके भेजे इन पत्रों के साथ, और पहला ये पत्र हमारे पास है दौलतबाग मुरादाबाद से, और ये श्रोता हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और उनके साथी। करनाल से हमें पत्र भेजा है सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों ने। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से ये श्रोता है, ये हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और उनके साथी। वारणा शाहपुर से ये एक पत्र आया है और ये लिखने वाले श्रोता हैं विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, सतीश वाघमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रुमेण और उनके परिवार के सदस्य। आप सुनना चाहते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसकी धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को गाया है मुकेश ने और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

श्रोताओं, अगला जो पत्र हमारे पास है इसे लिखा है धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी ने। पीपर पारा पालजुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हमें एक पत्र मिला है और ये श्रोता हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके साथी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का पत्र हमें मिला है। राजपुर से एक पत्र हमें मिला है, यह है घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ, कुणाल और उनके साथी। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का पत्र हमें मिला। आप सुनना चाहते हैं सुहागन फिल्म का ये गीत, लीजिए सुनिए।

अगला ये जो ख़त हमारे पास है, इसे लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। सपना संगीता रोड इंदौर से ये पत्र हमें मिला है। ग्राम खेड़ा मंदसौर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान का पत्र हमें मिला। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरिंगी से भागवत वर्मा, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा और मोहम्मद शादाब खत्री, आपका पत्र हमें मिला। और आप सभी सुनना चाहते हैं इस गीत को, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन ने इसका संगीत दिया है और फिल्म है चोरी चोरी।

श्रोताओं, अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है उसे भेजा है बहलोल नगर सूरतगढ़ राजस्थान से नरेश वर्मा, माया वर्मा, शब्बू और उनके परिवार के सदस्यों ने। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से हमें पत्र लिखा है आप सभी ने। नारायण खड़से, ललिता खड़से, स्वाति, परी, संजना, गणेश और कार्तिक भाऊ खड़से ने। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना, परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे और उनके साथियों ने हमें पत्र लिखा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष का पत्र हमें मिला। आप सुनना चाहते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, जिसकी धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी ने दी और फिल्म का नाम है जी चाहता है।

अगला ये पत्र हमारे पास है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। ये हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय का पत्र हमें मिला है। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण खड़से, ललिता, स्वाति, परी, संजना, गणेश और कार्तिक भाऊ खड़से का पत्र हमें मिला। वृंदावन से एक पत्र हमें मिला है। ये लिखने वाले श्रोता हैं अनीस उल्ला मंसूरी, कौशर जहां मंसूरी, शमी उल्ला, नसीमा, साहिस्ता, शन्नू, महनाज, गुंजा, करिश्मा और उनके बहुत सारे साथी। अगला ही पत्र हमारे पास है, इसे लिखा है सतीश वाघमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा और उनके साथियों ने। ग्राम लोहारी, जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद ने हमें पत्र लिखा। एक और पत्र हमारे पास है, ये है नांदखेड़ जिला वाशिम से और ये लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने। आप सुनना चाहते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत। बोल भरत व्यास के हैं, धुन सी रामचंद्रन ने बनाई है और फिल्म का नाम है नवरंग।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, अब जो ये पत्र हमारे पास है, इसे लिखा है सोमनाथ से, ये पत्र आया है। ये लिखने वाले श्रोता हैं डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी, वैष्णवी जगदाले, हर्सुल, वैभव, गौरव, मेघराज, युवराज, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और उनके साथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा और उनके साथी, मालेगांव से ये पत्र है। ये हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका गजानन घायल और उनके परिवार के सदस्य। आप सुनना चाहते हैं ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है उत्सव।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन, ये आकाशवाणी इंदौर है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी है, रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मर्डुर ख्याल, टुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Shri Kumar Mardur. Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डुर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
2: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhaya Nat, Vilambi Jhumra, Inayatahu, Drit Teen Tal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drit.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डोर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: प्रांत बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was राग बागेश्री। With that, we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू क्वोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके

लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।